0: वंदे मातरम।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। FM 103.4 MHz पर आज सोमवार है, शकशंबत 1948 के श्रावण माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात होगा विविध भारती का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत।

इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरितमानस का भाग 662। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा का भाग एक। कलाकार पंडित सी आर व्यास, प्रस्तुति रूपाली रूपक। कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:45 और अभी सुबह 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 और दिन में सुबह 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, लेखक और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसे आप दिन में 2 पुनः सुन सकते हैं। चित्रलोक कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 पर। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता अमजद खान पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का समय सुबह 9:30 और रात्रि 9:30। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00, दिन में 12:00 हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ। फेसबुक कमेंट्स द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार। सदा बहार नगमे ये कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे 3 सखी सहेली। पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दोपहर बाद 4:00। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर शाम 6:30 तक और इसी बीच 6:00 हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत आप सुनेंगे शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6:35 पर संध्या रंजन। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम की जानकारी जैसे कि हमने आपको दी, शाम 6:45 पर आप ये कार्यक्रम सुन सकेंगे और सुबह 6:45 पर। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए एक ही फिल्म से में फिल्म यहूदी के गीत। हवा महल ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। प्रहसन में सुनिए एब्स्ट्रैक्ट लव, लेखन धीरेंद्र वर्मा का, निर्देशन पुरुषोत्तम दारवेकर। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। इसमें आप सुनेंगे नए फिल्मी गीत। 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और 10:00 छाया गीत कार्यक्रम में आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 262। आज आप सुनेंगे अरण्यकांड।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण

गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए।

संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं जाने माने

0: शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। तो आइए सुने ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा का पहला भाग।
1: संगीत सरिता सुनने वाले मेरे मित्रजनों का मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज मैं आपसे बंदिश के माध्यम से राग प्रस्तुति पर बात करने वाला हूँ। पुराने जमाने में संगीत शिक्षा के अंतर्गत राग गायन पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना कि ख्याल गायन अर्थात बंदिशी को गायन को दिया जाता था। बंदिश की तालीम के बाद या तालीम के सिलसिले में शिष्यवृंद को यह पूछने का साहस नहीं होता था कि बंदिश के राग का नाम क्या है। जिन जिन बंदिशों की तालीम गुरुजनों से मिलती थी उन्हें ठीक ठीक जो कि तो याद करना, वारंवार उनको दोहराते रहना, इसके सिवा दूसरा मार्ग उनके पास था ही नहीं। और ध्यान देने की बात यह है कि इसी मार्ग पर चलकर वे संगीत में ऊंचा नाम हासिल कर सके, संगीत के धनी हो सके। इन महान कलाकारों को एक एक राग में अनेक विलंबित ख्याल, छोटे ख्याल तथा विविध अंगों से अलंकृत विपुल सांगीतिक सामग्री हासिल हुई। इससे कोई राग भी हो उसकी अभिव्यक्ति बंदिशों के माध्यम से वे बखूबी किया करते थे। इन उस्तादों का तालीम देने का तरीका ऐसा था कि उनमें नए पुराने का भेदभाव नहीं रहता था। सभी प्रकार के शिष्यों को एक साथ तालीम दी जाती थी। इससे यह लाभ होता था कि जो नए सिर से सीखने वाले थे उन्हें भी किसी न किसी प्रकार पुराने शिष्यों की बराबरी में ठहरने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था। इस प्रयत्न के अंदर पुराने शिष्यों को सिखाए गए ख्यालों को उनसे सीखकर याद करने का सिलसिला रहता था। इस तरीके से सालों साल यह अध्ययन बराबर चलता रहता था। इस जमाने के शिष्यगणों में पारंपरिक आदर प्रेम रहता था जिससे ज्ञान का यह विनिमय बड़े प्रसन्न वातावरण में हुआ करता था। इस फलस्वरूप अपने पास ख्यालों का सर्वाधिक संग्रह रहे। इस जिद से हर शिष्य हर प्रकार से कोशिश में लगा रहता था। उसकी विद्या का बड़प्पन उसको याद रहने वाले ख्यालों की संख्या में औंका जाता था। जिसके पास ख्यालों का विविध और विपुल संग्रह रहता था उसे बड़ा गवैया माना जाता था। राग गायन में सौंदर्य को विकसित करने में बंदिशों का आधार किस तरह सहायक हो सकता है ये हम देखेंगे। हम राग यमन से आरंभ करेंगे। इस राग की एक प्रसिद्ध बंदिश लिया जाए, एरी लाल मिले जे रूप सुंदर, ये बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश थी और सब पुराने गायक इनको गा लेते थे। तो ये बंदिश मैं आपको गाकर बताता हूँ।

ऐसे कई ख्याल राग यमन में है। पट तोरे कवन देहो तोरा सुर ज्ञान ममद शाह हे चतुर बालमुआ, ये ख्याल है। और कुछ ऐसे भी ख्याल है कि जो तराने सदृश रहते हैं, विलंबित ख्याल रहते हैं। वैसे तो द्रुत ख्याल है, पर जिसको यमन कल्याण ऐसे कहते हैं, इसका एक बंदिश में सुनाता हूँ।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती,
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं सीआईडी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं ओपी नैयर का संगीत।

0: राकेश आनंद बख्शी।
1: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आलम आरा इस फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले और साथियों की। इस गीत के अल्फाज लिखे हैं शेवान रिजवी ने और संगीत है AR कुरैशी का।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए हसरत जयपुरी के बोल, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम चोरी चोरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अब सुनिए तूफान और दिया इस फिल्म का गीत। भरत व्यास ने इस गीत को रचा है और इस गीत का संगीत बनाया है वसंत देसाई ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: द्वारकाधीश फिल्म का गीत, सुनिए आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में।

अभी आपने सुना पटरानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास, सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम कौर का प्रातःकालीन नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहे, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख घटनाओं पर। आज की महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहले सन 2003 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन को स्कड मिसाइल बेचने वाली उत्तर कोरियाई कंपनी पर नए प्रतिबंध लगाए थे। 2006 में आज ही के दिन रूसी प्रक्षेपण यान नेपर ज़मीन पर गिरा और 2007 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने लगभग 40,000 साल पहले पाए जाने वाले विशालकाय जीव वोमबैट के जबड़े का जीवाश्म मिलने का दावा किया।

और अब आइए उनके बारे में जानते हैं जो आज ही के दिन जन्मे। सन 1983 में जन्म हुआ भारतीय महिला चक्का फेंक एथलीट खिलाड़ी सीमा पुनिया का। 1967 में आसिफ बसरा का जन्म हुआ था जो भारतीय सिने अभिनेता और टीवी कलाकार थे। सन 1963 में K.S. चित्रा का जन्म हुआ जो भारत के प्रसिद्ध गायिका है जिन्होंने कई प्रसिद्ध गाने भी गाए। और श्रोताओं बता दें कि आज हम अपने नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में उन्हीं के गाए गीतों को आपको सुनवाएंगे। 1940 की बात करें तो भारती मुखर्जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था जो भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते थे। कल्पना दत्त आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1913 में हुआ था।

और अब आइए उनके बारे में जाने जिनकी आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में सबसे पहले आइए नमन करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। आज उनका पुण्यतिथि है। 2015 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 2016 में लक्ष्मू महाराज का निधन हुआ, जो भारत के जाने माने तबला वादक थे। शिवादिन राम जोशी का निधन सन 2016 में हुआ था, जो अपने समय के जाने माने कवि थे। 1987 में निधन हुआ सलीम अली, जो एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का निधन 1944 में हुआ था, जो हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी थे। तो ये थे आज के पुण्यतिथि पर, आइए इन सबको नमन करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आज जन्मदिवस है के एस चित्रा का, और उन्हीं के गीत को हम आज सुनवाएंगे अपने कार्यक्रम में। तो आइए सुनते हैं उनके गाए गीत को।

0: भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब आइए नजर डालते हैं आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। तो आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में सबसे पहले आकर्षक बनेगा राजेंद्र सरोवर पार्क। अब होगी कैंटीन की भी सुविधा। शहर का इकलौता सैरगाह राजेंद्र सरोवर पार्क अब और आकर्षक बनेगा। भभुआ में ये स्थित है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए पार्क परिसर में अब कैंटीन की सुविधा भी मिल सकेगी। जल्द ही पार्क परिसर में लोगों को कैंटीन में चाय नाश्ता भी मिल सकेगा। इस सुविधा में पार्क के सैर सपाटे और मस्ती मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से टहलने आने वाले लोग पहले से ज़्यादा वक्त तक ठहर सकेंगे। नगर परिषद भभुआ की सभापति रविता पटेल व सभापति प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह ने भास्कर से बातचीत के दौरान बताया कि शहर के इस इकलौते सैरगाह यानी राजेंद्र सरोवर पार्क में स्थित सरोवर में पहले पानी नहीं ठहर पाता था, लेकिन अब तालाब में पानी का ठहराव साल भर रहे इसके लिए देसी तकनीक के उपाय किए जा चुके हैं। अब सरोवर में पानी लबालब भरा रहता है और नियमित रूप से पानी का भराव भी किया जाता है। इसके तहत राजेंद्र पार्क परिसर में गगनचुंबी तिरंगा फहराने के लिए स्टैंड स्थापित किया गया है। हमारी दूसरी गतिविधि में सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब मिली महिला डॉक्टर, सीएम ने लिया संज्ञान। डॉक्टर मणि कुमार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई के निर्देश। रोहतास के डीएम दीपक कुमार मिश्र के सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में एक महिला चिकित्सक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सिविल सर्जन को संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण लेने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस दौरान डीएम ने मॉडल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर समेत अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति का सत्यापन कराया गया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मणि कुमारी बिना सूचना के अनुपस्थित मिली।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित

और हमारी अगली गतिविधि में ग्रीन मेमोरियल हाई स्कूल गया ने DPS पटना को 8-2 से हराया। नारायण वर्ल्ड स्कूल जमुहार के संयोजन और सहयोग से आयोजित हो रहे CBSE क्लस्टर 3 बास्केटबॉल महाकुंभ का 5-दिवसीय आयोजन पूरे जोश के साथ अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है। खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा न सिर्फ स्थानीय दर्शकों को बल्कि पूरे देश के खेल प्रेमियों को रोमांचित कर रही है। मुख्य मुकाबले के तहत अंडर 19 बालिका वर्ग के एक रोमांचक मैच में ग्रीन मेमोरियल हाई स्कूल गया ने DPS पटना को 8-2 से हरा दिया। रविवार का दिन स्टार खिलाड़ियों के रूप में उभरी अवंतिका के नाम रहा। इस जीत में अवंतिका का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, जिन्होंने अकेले क्रीन के लिए 6 बास्केट गोल किए। क्रीन ने बेहतरीन पासिंग और तेजी से आगे बढ़ते हुए शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी। अवंतिका ने पास और दूर दोनों जगहों से मिले मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्हें शानदार तरीके से बास्केटबॉल में बदला। और हमारी अगली गतिविधि में मंडलकारा की महिला बंदियों ने जाना सकारात्मक जीवन का मंत्र। मंडलकारा सासाराम में रविवार को राज्य विद्या केंद्र के तत्वाधान में महिला बंदियों के लिए विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने की। इस दौरान महिला बंदियों को विश्व प्रसिद्ध शांति के शिक्षक प्रेम रावत के शांति का संदेश विषय पर आधारित वीडियो दिखाया गया तथा ज्ञान की तकनीक के माध्यम से सकारात्मक जीवन, मानसिक शांति और आत्मचिंतन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में करीब 30 महिला बंदियों ने भाग लिया। और हमारी अगली गतिविधि में अमर शहीदों के शौर्य और बलिदान को नमन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल भभुआ में कार्यरत सेनानिवृत्त सैनिकों ने अस्पताल परिषद स्थित शिव मंदिर के समीप एकत्र होकर राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने

कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। और हमारी अगली और अंतिम गतिविधि में जर्जर दुर्गावती पावर सब स्टेशन का विधायक ने लिया जायजा। जर्जर हो चुके दुर्गावती पावर सब स्टेशन के भवन का रविवार को रामगढ़ के बसपा विधायक सतीश यादव पिंटू ने जायजा लिया। भवन की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि इसके एक हिस्से की दीवार गिर गई है और बरसात के दिनों में छत से पानी टपक रहा है। हालात ये है कि भवन कब धाराशायी हो जाए ये कहना मुश्किल है। और ये थी आज की स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की एक नज़र। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में का अगला गीत चित्रा के गाए स्वर में।

और अब आइए नज़र डालते हैं आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर, और लगभग सभी समाचार पत्र हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। श्रोताओं, हमारी पहली जो सुर्खी है उसको

लगभग सभी समाचार पत्रों में अपनी जगह के साथ साथ हेडलाइन बनाई है। सुर्खी है हिंदुस्तान से, पेपर लीक मुद्दे पर संसद में सरकार की परीक्षा। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, परीक्षा सुधारों पर नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स गठित, मोदी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। वहीं प्रभात खबर ने हेडलाइन में लिखा है, पेपर लीक रोकेगी हाई पावर टास्क फोर्स, नीलेकड़ी होंगे अध्यक्ष। समाचार विस्तार से हिंदुस्तान, सरकार विधेयक पेश करने की तैयारी में, विपक्ष दबाव बरकरार रखेगा। नीट पेपर लीक मुद्दे पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद विपक्ष संसद और संसद में से बाहर सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है। सरकार जहां संसद में पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में सोमवार को संसद में एक बार फिर हंगामे के आसार है। पेपर लीक पर आंदोलन कर रहे छात्रों की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की पहली मांग पूरी होने के बाद विपक्ष ने दूसरी और तीसरी मांग को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। विपक्षी दल छात्रों पर हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के साथ पीएम ने माफ़ी की मांग करेंगे। विपक्ष मांगों को लगातार उठाते रहे हैं। इंडिया की रणनीति पर अंतिम फैसला आज। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पेपर लीक संशोधन विधेयक और संसद में रणनीति पर अंतिम फैसला सोमवार को राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के संसदीय दल के नेता और सांसद भी हिस्सा लेंगे। संशोधन विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि मामले की सुनवाई के लिए हर राज्य में त्वरित अदालतें स्थापित की जाएंगी। वहीं प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। संगठित अपराधों के लिए विधेयक में कम से कम 7 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। और अब अगली सुर्खी पर एक नज़र डालते हैं। हमारी अगली सुर्खी हिंदुस्तान से है, बिक्रमगंज में ज्वेलरी शोरूम से दिन दहाड़े 35 लाख के गहने लूटे। रोहतास जिले के विक्रमगंज शहर में रविवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम में धावा बोलकर करीब 35 लाख रुपए के सोना चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली। महज 4 मिनट में हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई है। घटना तेंदुनी चौक के समीप हीरा आभूषण भंडार में हुई है। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी प्रतीम उर्फ गुड्डू ने बताया कि सबसे पहले एक युवक ग्राहक

0: तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटे, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

0: डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें एक स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन

0: महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत फिल्म उपकार से। इस गीत के गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और उनके साथी गुलशन बावरा ने शब्द दिए हैं और कल्याण जयालंज जी ने धुन बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर के स्वर में। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। लौटते एक छोटे से अंतराल की बात।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को। प्रस्तुत है पत्र आधारित फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। तो पसंद आपकी सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम कौर का नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद ही नहीं करती हूँ बल्कि आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए, अगर मस्त हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा अभी जो कार्यक्रम है वो है पत्रों पर आधारित। तो आपके ढेर सारे पत्र तो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो चाहते तो हैं अपना नाम सुनना, गीतों का नाम सुनना, गीत सुनना अपने पसंद का, पर वो अभी तक हमें गीत नहीं लिख पाए हैं, पत्र नहीं लिख पाए हैं, क्षमा करें। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंद का गीत सुनना तो हमें पत्र ज़रूर लिखिए, और उसके लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम 821-115। तो हमें पत्र लिखिए और बताएं आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे। तो चलिए, अभी जिन श्रोताओं ने अपने गीतों की बात कही है लेते हैं उनका नाम और सुनवाते हैं उनके पसंद का गीत। तो ये पत्र आया है क्वात से, और श्रोतागण हैं शेख जफर हसन, राकेश रोशन, और ये फिल्म अनीता फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। और ये पत्र है

राजपुर मोरवासी सदाबहार रेडियो श्रोता संघ हमारे संघ इनके संघ का नाम है। और हमारे श्रोतागण जो है वो है भाईकारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, और जो ढोली सकरा से हैं वो है जयंत कुमार बैरागी। तो आइए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

इस गीत को सुनना चाहा है ओल्ड लिस्नर ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुकेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौशन गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पल्लव गुप्ता, पंखुरी गुप्ता, माला मिश्रा, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से है मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, तन्मय राज, गुनगुन और साक्षी मिश्रा।

और हमारे श्रोता हैं ग्राम नहोना प्रखंड सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह, डमरू कलाकार और मनोज गुप्ता। वहीं नेवरिया गायत्री मंदिर सासाराम से है मुन्ना, गुडन, आदर्श, ओम, अरुण, नंदना, नंदनी, विनय।

गोकुल चौक गंगजला सहरसा से है राधे कुमार विद्यार्थी, सविदा राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा और नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

आदर्श नगर मलोट से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। वहीं ब्रह्मपुरा मनिकाची से है अक्षय लाल राय भाई, पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार, प्रिंस कुमार।

इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भाट्टापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। हमारे अगले श्रोता है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरजी वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बेचू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख।

कलेर बिहार से मोहम्मद आशिफ खान, बेगम निकहत परवीन, महसौल नूर महल से है हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू।

इस गीत को सुनना चाहा है रेडियो श्रोता संघ महर नगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर राही, श्रीमती सरिता गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहाणकर, प्रणीता गौहाणकर, अर्जुन गौहाणकर, टुक टुक। आकार वाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गौहाणकर, सुमित गौहाणकर, कुमारी ध्वनि गौहाणकर, पनी।

श्रोताओं, इसी के साथ पसंद आपके कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगा हर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
1: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी होंगे अध्यक्ष। केंद्र सरकार आज लोकसभा में प्रश्नपत्र लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने बेगूसराय की कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। और बिहार के उभरते खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट और सावन कुमार का हॉकी में शानदार प्रदर्शन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला सम्मान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया विधेयक पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपंडे का, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक बी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी कार्यबल का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक आज के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार शरीफ डेयरी प्रोजेक्ट परिसर में प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले सुधा दही और लस्सी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के दौरान सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मगध

0: बाद तिरहुत, पटना और कोसी प्रमंडल के लिए 8 पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के 300 खुदरा विक्रेताओं के बीच डीप फ्रीजर का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार।
1: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सूची तय कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन मरम्मत, शौचालय, रैंप, चार दीवारी, रसोई शेड, खेल मैदान और डिजिटल ग्रामीण पुस्तकालय सह उत्थान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही गांवों में पक्की गली नाली, लघु नहरों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य शेड, कौशल विकास केंद्र और ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। मुक्ति धामों का सौंदर्यीकरण, आहर पोखर और तालाबों का जीर्णोद्धार, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा व्यक्तिगत पशु शेड निर्माण भी प्राथमिकता में शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इन योजनाओं को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बेगूसराय स्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर यानी ऑक्सबो झील माने जाने वाली कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बूढ़ी गंडक नदी के घुमाव से बनी इस अनोखी ऑक्सबो आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर अधिकरण ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि चेरिया बड़ियारपुर स्थित कांवर झील को वर्ष 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। पहले लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैली कांवर झील अब जलस्तर घटने और अतिक्रमण के कारण कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती जा रही है। पीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जलस्तर में लगातार गिरावट और पारिस्थितिक क्षरण के कारण झील में मछलियों की संख्या तथा जैव विविधता में भारी कमी आई है। कई स्थानीय मछली प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है या झील के कुछ हिस्सों से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
1: प्रदेश में ग्रामवार गन्ने की खेती का रकबा निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी सर्वे की शुरुआत की गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने सभी जिलों के एक पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। जीपीएस तकनीक और ऐप आधारित डेटा संग्रह के माध्यम से प्रत्येक खेत और गन्ने की किस्म का विवरण जुटाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य कम रकबे वाले क्षेत्रों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान गन्ना किसानों की आईटी भी बनाई जाएगी। देश भर में आयुर्वेद शिक्षा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा कोठेकर ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पटना के शताब्दी समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत 10वीं के बाद विद्यार्थी 2 साल का आयुर्वेद पाठ्यक्रम कर सकेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी और सावन कुमार ने शानदार प्रदर्शन के साथ देश की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सर्व

0: सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान पाने का गौरव हासिल किया है। क्रिकेट में जिम्बाब्वे को तीन T20 मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वैभव को पहला प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। वहीं ओमान के मस्कट में आयोजित युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत में पटना निवासी सावन कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षक तथा फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया। मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से एक बार फिर मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आएगी। इधर विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 27 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश में बाढ़ के दौरान होने वाली बीमारियों के कारण और उपचार पर विशेष अध्ययन कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर रिसर्च को सौंपी है। पायलट परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के दौरान बाढ़ का उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वसन रोगों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इस अभियान में संबंधित पीएचसी, सीएचसी, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता टिम्पी गर्ग पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक होंगे। वे 1 सितंबर को हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। श्री गर्ग वर्तमान महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना से 258 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक जेल भेजे गए प्रमुख लोगों में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरव, पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव और 4 छात्र नेता शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में उन्होंने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सनहा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना के राजीव नगर से एसटीएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2,67,00,000 रुपए की साइबर ठगी के आरोपित नीलमणि को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर हावड़ा के एक कारोबारी को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने का आरोप है। सहरसा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची 2 पुलिस टीमों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इन घटनाओं में 1 थानाध्यक्ष, 2 जमादार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को देशी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। हिंदुस्तान लिखता है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी में प्लास्टिक कचरे से बेंच बनाने की पहल को सराहा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हर जिले के शहरी क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस, अब गांवों में होगी तैनाती। प्रभात खबर ने लिखा है, राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, रोहतास और दुर्गावती में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी सरकार। आज अखबार समेत सभी समाचार

समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी होंगे अध्यक्ष। केंद्र सरकार आज लोकसभा में प्रश्नपत्र लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बेगूसराय की कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। और बिहार के उभरते खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट और सावन कुमार का हॉकी में शानदार प्रदर्शन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला सम्मान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए एक नजर डालते हैं आज के कार्यक्रम विवरणी पर।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी मलिका कार्यक्रम, हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित है। 9:10 पर, 9:30 पर होगा विविध भारती का कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे सुबह के 10 बजे 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। भेंट वार्ता में आज विषय है ग्लूकोमा विषय पर डॉक्टर प्रवीण कुमार से चंदा देवी की बातचीत। सुबह 10:30 पर होगा भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

सुबह 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही 11 बजे चलेंगे पुनः विविध भारती कार्यक्रम की ओर और सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम को। हिंदी समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साथ ही 12:05 पर पूरा होंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

5:10 पर भक्ति संगीत के तहत कार्यक्रम सुनेंगे। वंदन कार्यक्रम के तहत महिला बहनों का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगी महिलाएं घर आंगन कार्यक्रम में, जिसे आप सुनेंगे 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत संध्या 6:00, भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से संध्या 6:05 पर। तदुपरांत ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या के 6:10 पर, जिसमें आज चर्चा है प्रकृति का संरक्षण क्यों है जरूरी, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को जो मनाया जाएगा उस पर लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही वार्ता है, वार्ता का विषय है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वार्ताकार अभिनव दुबे।

6:40 संध्या के आप सुनेंगे सांझे गीत, भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित यह कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। इसके बाद संध्या 7 बजे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुनेंगे। गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या के 7:15 पर।

प्रादेशिक समाचार जिले की हलचल संध्या के 7:25 पर होगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से। उसके बाद 7:50 से विधानमंडल समीक्षा, तदुपरांत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:00 संसद समीक्षा। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद आप सुनेंगे रात्रि के 8:15 पर। रात्रि 9:00 भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोकधारा हम आपको सुनवाएंगे। इसके बाद रात्रि के 9:15 पर होगा बंदगी

रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन कर हम आपको सुनवाएंगे। और आज की सभा का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर। तो ये थे आज के कार्यक्रम विवरणी की एक झलक। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। अब जैसा कि हमने कहा था कि कार्यक्रम के तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का पहला गीत सयोनी फिल्म से। ज्योति नूरन ने इसे स्वर दिया है, शब्द अलौकिक राही जुनून बंद के, और संगीत है जॉय आनंद जुनून बंद के।

अभी आप सुन रहे थे सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जुबिन नौटियाल नीति मोहन के स्वर में, नसीर काजमी मनोज मुतशिर ने इस गीत को शब्द दिया था और धुन बनाया था नुसरत फतेह अली खां, रोचक कोहली का ने। और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सनक से। स्वर स्टेबिन दीक्षा तूर के, गीतकार हैं मनोज यादव समीर अंजान और संगीतकार है चित्तरंजन भट्ट नदीम श्रवण।

सनक फिल्म का अभी हम सभी ये गीत सुन रहे थे श्रेया घोषाल के स्वर में। शब्दों को पिरोया था रश्मि विराग ने और धुन जीत गांगुली के। और इसी के साथ गीत मलिका कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। अब से थोड़ी देर में हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम को, तो चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं आज के फनकार कार्यक्रम को। कृपया करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो हाथ में।
2: अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
3: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों,
4: यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान, आज के फनकार।

0: अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है? कहां है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है बता? अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? ठहरो, आओ। आओ अब आयो हाथ में। आओ आओ। शाबाश।
0: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी, इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो, पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था

0: नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की, और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी।
1: अरे काले

0: के हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी।
1: अरे काले

0: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
1: कौन? कौन?
2: डर गए क्या? कसम भैरव की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
2: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ पे कोई काम नहीं
2: है, काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: कहा था आपको लाने के लिए, मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
3: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा,
3: क्या हुआ?
1: देखो,
3: काली बाबू, आप
2: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
4: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब।
2: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
4: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
1: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
2: बस बस, बहुत हो गया। बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना।
4: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
2: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरों की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
0: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं। जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
2: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
5: घर में है?
2: मैं
5: आदाब सर, विशन साहब
2: आइए, आइए सेठ जी आइए।
6: नमस्ते सेठ जी।
2: नमस्कार, दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ, मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
5: इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
6: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
2: हाँ। ऐसे नहीं होगा सर जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सर जी।

क्या आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहां आपको यह बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार

0: एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया, हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना, हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: जाने।
1: वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला

0: फिल्म।
1: याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रुदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: लेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा

0: कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ CRPF ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि CRPF अटूट साहस, असाधारण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपने स्थापना के बाद से CRPF ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य।

0: दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों इस
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त चंदा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे आंखों की एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जो शुरुआती चरण में बिना किसी अस्पष्ट लक्षण के हमारी दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए, हमारे आज के नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आपको और आपके सभी श्रोतागणों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ।
1: डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा पर, जिसे हम काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है आपसे कि डॉक्टर साहब, बहुत ही आसान भाषा में जो हमारे श्रोता हैं उन्हें समझाइए आप कि ग्लूकोमा आखिर होता क्या है।
2: ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता कि किसी को ग्लूकोमा है। ये जब अचानक जांच होती है या मरीज को कम दिखना शुरू होता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तब उसको पहली बार जब नेत्र सर्जन देख रहा होता है, नेत्र रोग विशेषज्ञ, तब उसको पता चलता है डॉक्टर के द्वारा कि उसकी नस सूख रही है, जो आम बोलचाल की भाषा में नस को सूखना बोलते हैं। और ये चीज होती है, एक एक्वस फ्लूइड होता है, उसके फ्लो में रुकावट आती है, उसके कारण आंखों में प्रेशर बढ़ने लगता है और इस प्रेशर के कारण आंखों के नशों पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण रोशनी जाती है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब हमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें ग्लूकोमा हो गया है और तब तक से काफी देर भी हो जाती है। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन जो हमारे सुनने वाले श्रोता भी शायद इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन एक चीज है डॉक्टर साहब जो हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, कहते हैं कि कैटरेक्ट जिसको हम सफेद मोतियाबिंद कहते हैं और ग्लूकोमा है काला मोतियाबिंद, तो दोनों में फर्क क्या होता है ये हमें बताइए, क्योंकि बहुत लोग सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद में फर्क नहीं समझते।
2: हाँ बिल्कुल मैडम, ये एक आम सी बात है। सफेद मोतियाबिंद में जो लेंस होता है उसमें धुंधलापन आने लगता है।

0: है जिसको कटरैक कहा जाता है, और इसको सफेद मोतियाबिंद कहते हैं।
1: जी
0: जिसको सफेद मोतियाबिंद होता है, इसका उपचार एकमात्र सर्जरी है। सर्जरी के बाद उस व्यक्ति को उसकी पूरी रोशनी लौट आती है, और ग्लॉकोमा में प्रेशर बढ़ने के कारण, नसों पे प्रभाव पड़ने के कारण जो रोशनी जाती है वो वापस नहीं आती। ये सबसे मेन अंतर है सफेद मोतिया और काला मोतिया।
1: जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो कैटरेक्ट है सफेद मोतियाबिंद, तो उसमें अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो रोशनी आ जाती है, लेकिन क्या ग्लूकोमा जैसी बीमारी में अगर हम ऑपरेशन कराएं तो इसकी कोई सुविधा नहीं?
0: नहीं मैडम, ग्लूकोमा में जो विजन लॉस हो गया है,
1: जी,
0: जो रोशनी चली गई, वो रिकवर नहीं होती, वो वापस नहीं आ पाती है।
1: कोई ऑप्शन?
0: इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। फर्स्ट पहले तो लेट स्टेज में पता ही चलता है, डायग्नोसिस ही बहुत लेट होती है, क्योंकि इसमें पेशेंट हमारे यहाँ अवेयर होते नहीं, जागरूक है नहीं। तो जब उस तरीके की रोशनी में प्रॉब्लम आती है तब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उस कंडीशन तक काफ़ी लॉस हो चुका होता है। और इसमें जो रोशनी बची रहती है, कोई भी डॉक्टर यही प्रयास करता है कि उस रोशनी को सेव करके आगे की लाइफ अच्छी बिताई जा सके पेशेंट की।
1: जी आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कैटरेक्ट की बात करते हैं तो एक बुढ़ापे की बीमारी से मानते हैं हम, कहा भी जाता है कि 50+ एज वालों को ही होती है, लेकिन अगर हम ग्लूकोमा की बात करें तो क्या ये किसी भी एज में हो सकती है या ये भी दूरदराज बीमारी मानी जाती है?
0: नहीं, आपने जैसे कहा कि कैटरेक्ट को उम्रदराज व्यक्ति में होता है, लेकिन अब ऐसी चीजें रह नहीं गई, अब कैटरेक्ट भी इवन बच्चों में भी हो रहा है। और ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो उसका एज निर्धारित नहीं है, ये बच्चों में भी होता है, कुछ बच्चे तो ग्लूकोमा की बीमारी के साथ पैदा भी होते हैं।
1: यानी कि स्टार्टिंग में ही बच्चों को हाँ, हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है, और कुछ बच्चे बाय बर्थ ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं। और ये मिथ है, कहा जाए कि ये उम्र दराज लोगों को होती है, ये हर ग्रुप हर एज को हो सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अगर ग्लूकोमा किसी को अगर मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है तो रोशनी नहीं आती, और अगर बच्चों में अगर ये समस्या है, छोटे बच्चों में, या फिर आप जैसे बता रहे हैं कि जन्मजात, तो वैसे बच्चों के लिए कोई ऑप्शन है?
0: बच्चों में लास्ट या फर्स्ट जो कहें, मेनली सर्जरी को ही एक प्रेफर किया जाता है रोशनी को बचाने।
1: छोटे बच्चों में भी सर्जरी?
0: हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को काला मोतियाबिंद शुरू हो गया है तो उनमें किस तरह के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं ताकि व्यक्ति को महसूस हो कि उसे ये बीमारी हो गई? इसका पहला संकेत क्या होता है? कुछ ऐसे लक्षण होते हो जिससे इंसान सचेत हो कि हाँ हमें ये बीमारी होने के चांसेस हो रहे हैं?
0: मैम, ऐसा कहा जाए कि कुछ लक्षण, तो लक्षण ग्लूकोमा में इसको ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। हाँ, कुछ कंडीशंस में पेशेंट्स को रंगीन पट्टियां दिखती हैं बॉल्स वगैरह के आगे, और जो पावर वाला अगर वो चश्मा पहन रहे होते तो काफी जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, चश्मे का नंबर चेंज जल्दी जल्दी होने लगता। तो इसको थोड़ा सा जो अवेयर होता है तो उसमें डॉक्टर के पास पहुंचता है तो पता चल जाता है, लेकिन इसको मेन नहीं कह सकते कि प्रॉपर यही है। हाँ, कुछ ये साइन है जिनको,
1: यानी कि कहा जाए तो ग्लूकोमा जो है वो मतलब एक स्टेज पे पहुंचता है तभी ज्यादातर उभर कर सामने दिखाई देता है।
0: ज्यादातर स्टेज पे नहीं, एक रूटीन चेकअप होना चाहिए 40 ईयर्स के बाद, जो की अभी अपने यहाँ इतने लोग अवेयर नहीं है, और इस कारण से डायग्नोसिस में लेट होता है, पता चलने में देर होता है। और दूसरी चीज, ये बीमारी जिनके फैमिली हिस्ट्री रही है वो ज्यादा उसके लिए उपयुक्त पेशेंट होते हैं या प्रॉन पेशेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा अवेयर होना चाहिए और प्रॉपर 40 के बाद प्रॉपर ईयरली चेकअप कराते रहना चाहिए एक अच्छे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से, और प्रॉपर उस पेशेंट्स को अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मेरे फैमिली में ग्लूकोमा के पेशेंट्स हैं, ताकि कुछ केयरफुल जांचें और की जा सके उसके लिए।
1: जैसे अभी आपने बताया कि अगर घर में किसी इंसान को, सदस्य को हो, तो ये दूसरे को होने के चांसेस परिवार में हो सकते हैं, तो अधिकांशतः ये देखा भी जाता है कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो अगर घर में किसी एक सदस्य को हो तो दूसरे को भी हो जाता है, तो मतलब ये कहां तक सही है कि मतलब ये एकदम बिल्कुल होना ही है?
0: चांसेस रहता है कि मैक्सिमम हो सकता है उस फैमिली के अदर मेंबर को, किसी से कोई भी डॉक्टर सलाह देता है कि आपकी फैमिली में है तो आप पूरे फैमिली के इवन बच्चों को जो आपसे और हैं उनको पूरी एक बार रिलेटेड बच्चे को जरूर चेक करवाई।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो लक्षण बता दिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई अभी दिखाई दे रहा है आंखों से तो चलो भाई ठीक है, क्या दिखाना है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है, इसे आप लापरवाही कहिए या नजरअंदाज कहिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, ये रिस्क कितना नुकसानदायक है?
0: ये रिस्क तो नुकसानदायक ही है, कितना का तो कोई सवाल

0: अब इसमें अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है
1: जी।
0: ना दिखने के बाद भी पेशेंट उस चीज को टाल रहा होता है। कभी कभी तो ये पता होता है पेशेंट्स की फैमिली में कि मेरे फैमिली में किसी को ये बीमारी है, और जागरूक ना होने के कारण वो अपना चेकअप नहीं कराता।
1: कुछ लोगों में तो ये भी देखा जाता है कि अगर डॉक्टर नहीं पूछते हैं कि भाई आपके परिवार में अगर किसी को ये बीमारी है, तो लोग खुलकर बताते भी नहीं है कि हमारे सदस्य में ऐसी कोई
0: बीमारी है। मैडम यही चीज तो मैंने कहा ना कि लोग अवेयर नहीं है इस बारे में, बस यही कहा जा सकता है।
2: अच्छा, अब हम टेस्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, किस किस प्रकार का प्रोसीजर होता है?
0: सबसे बेसिक टेस्ट तो मैडम इसमें हम लोग प्रेशर जांच करते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में यूज करते हैं, और इसमें और दूसरा टेस्ट होता है फील्ड का टेस्ट, ये किया जाता है, और तीसरी जांच होती है नसों की, कि नसों की स्थिति क्या है इस पेशेंट्स में। मेन यही तीन टेस्ट करना होता है, बाकी अदर टेस्ट जैसा नीड होता है वैसा एडवाइस करते हैं हम लोग पेशेंट को।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी के भी अलग अलग स्टेज होते हैं?
0: हाँ, अलग अलग स्टेज होते हैं। ये दो तरीके का होता है, ओपन एंगल और क्लोज एंगल, और इन दोनों बीमारियों का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो चेंज हो जाता है। और कभी कभी जो हम लोग कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, उस दवाइयों से ये अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है, तो फिर कुछ पेशेंट्स में हमें सर्जरी की भी जरूरत होती है, और सर्जरी के बाद इस पे पेशेंट्स का काफ़ी केयर करना पड़ता है। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होने के कारण अब छोटे छोटे डिवाइस भी आते हैं जो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और इससे पेशेंट्स की लाइफ पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हाँ, और दूसरी चीज़, अपने यहाँ पेशेंट्स एक बार सोचता है कि ऑपरेशन करा लिया तो मेरा ग्लॉकोमा खत्म हो गया, ये भी सबसे बड़ा मिथ है उस पेशेंट्स के लिए
1: जी।
0: वो सोचता है कि ग्लॉकोमा था, मैंने ऑपरेशन करा लिया तो मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। नहीं, उसके बाद ही प्रॉपर उसका अपना IOP चेक कराते रहना चाहिए एज एडवाइज डॉक्टर। कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी प्रेशर नहीं कंट्रोल होता है, तो कुछ दवाइयाँ हमें शुरू करनी पड़ती हैं, और कुछ ऑपरेशन कुछ सालों के बाद फेल हो जाते हैं, तो फिर दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, फिर रिपीट ऑपरेशन की भी जरूरत आती है।
1: यानी कि इंसान अगर ऑपरेशन करा लेता है तो फिर भी डॉक्टर के संपर्क में
0: रहना बहुत जरूरी
1: है, समय समय पर जांच की आवश्यकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम बिल्कुल।
1: जैसे कि अभी आपने सर्जरी लेजर की बात की, तो सर लेजर और सर्जरी की जो प्रक्रिया है इस बीमारी में, इसकी क्या भूमिका हो?
0: ये डिपेंड ऑन कंडीशंस मैडम निर्भर करता है कि किस पेशेंट्स में हमें लेजर करना और किस पेशेंट्स में सर्जरी करनी होती है। हाँ, इन दोनों चीजों से काफी हद तक पेशेंट्स को एक अच्छा रिलीफ मिल जाता है। ये प्रॉपर उस पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद ही हम लोग एडवाइस करते हैं कि किसमें लेजर की जरूरत है और किसमें सर्जरी की जरूरत है।
2: आइए डॉक्टर साहब की पसंद का ये केस सुनते हैं।

0: बहुत सारे डॉक्टर को मैंने देखा है कि अगर कोई मरीज आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी को लेकर के आता है तो डॉक्टर उनसे एक सवाल ये जरूर पूछते हैं कि आपने कोई दवा लंबे समय से आंखों में डाली है। तो लोगों का कहना होता है कि हाँ भाई हमने डाली है, और डॉक्टर कहते हैं इसका यही दुष्परिणाम है।
1: हाँ मैडम, कुछ दवाइयों का इफेक्ट आता है और इसी से कहते हैं हम लोग कि प्रॉपर पेशेंट्स को टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए, स्पेशली ग्लॉकोमा पेशेंट्स को। और इसमें कुछ पेशेंट्स लैप्स भी हो जाते हैं और काफी लंबे सालों के बाद एक ही दवा वो खरीद करके रेगुलर डाल रहे होते हैं, जबकि वो रूटीन चेकअप के बाद उस दवाइयों को या तो जरूरत होती है चेंज करने की या उसके साथ कुछ दवाइयाँ ऐड करने की, जो पेशेंट्स करते नहीं।
0: जी, यानी कि एक ही दवा को बार बार डालना सही नहीं होता है, डॉक्टरी सलाह के अनुसार से ही किसी
1: यस,
0: चीज को
1: बिल्कुल
0: डालना।
1: बिना डॉक्टरी सलाह के अपने से किसी भी तरीके की कोई दवा स्पेशली इस बीमारी में तो नहीं यूज करना चाहिए। और जो अभी हालात होते हैं कि जो मेडिकल शॉप से खुद लोग जाके खरीद लेते हैं और खुद से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया उसी दवाइयों को लंबे समय तक डाल रहे होते हैं, हालांकि उनका डॉक्टर उनको सलाह दे रखा होता है कि आप 3 मंथ के बाद चेकअप रूटीन चेकअप के लिए आइए।
0: हो सकता है कि आंखों में अगर किसी तरह का कोई बीमारी हो तो हो सकता है डॉक्टर चेंज करे, लेकिन इंसान सोचता है थोड़े से पैसे बचाने के लिए कि नहीं चलो भाई हमारा ये दवा ठीक है, हमें आंखों से ठीक ठाक दिख रहा है, साफ साफ साफ दिख रहा है, चलो यही दवा डालते हैं।
1: पैसों का तो नहीं कह सकता हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग अवेयर नहीं है।
0: जी,
1: उनको पता होता है कि एक दवा डाल ले ली है और इसी दवा से मेरा ग्लोकोमा ठीक हो गया, सोच ये है।
0: यानी कि हमें सोच को बदलना होगा।
1: बिल्कुल, सोच को बदलना होगा, समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: ऐसे पेशेंट्स को तो फर्स्ट थिंग मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने प्रॉपर IOP उसका चेक होते रहना चाहिए टाइम पे, और डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में प्रॉपर रहना ही चाहिए उसको, और लिविंग स्टाइल अपना नॉर्मल रखे, जैसी दूसरी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज वगैरह है तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए।
0: जैसे अभी सर डॉक्टर साहब आपने डायबिटीज के बारे में बताया, तो कुछ ऐसी और भी बीमारियां होती हैं जिससे आंखों को नुकसान होता है?
1: बीमारियां तो वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेन जो होता है डायबिटीज को ही हम लोग मानते हैं, और हाइपरटेंशन को, इन दोनों का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। और वही बात है कि प्रॉपर समय से सारी चीजों की रूटीन चेकअप होती रहनी चाहिए।
0: साहब बहुत लोगों का ये भी कहना है जैसे कि अभी आजकल जो हेयर डाई की अगर हम बात करते हैं तो अभी हेयर डाई में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, लिखा तो होता है बहुत कुछ लेकिन होता कुछ नहीं है, तो इंसान बहुत लोग कहते हैं कि सर पर हेयर डाई लगाने के बाद वो आंखों पर भी बहुत इफेक्ट करता है, ये कहां तक से?
1: नहीं, कुछ हद तक कुछ जगहों पे एलर्जिकल रिएक्शन भी होते हैं और कभी कभी इसमें दुष्परिणाम काफी बुरे होते हैं, काफी दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं, तो पहले उनको टेस्ट करना चाहिए प्रॉपर और एक अच्छे ब्रांड का ही हेयर डाई यूज करना चाहिए,
0: या फिर जैसे हम हर्बल भी कह सकते हैं, हर्बल भी यूज करें, मेहंदी यूज करें?
1: हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने स्किन वगैरह पे चेक कर लेना चाहिए उसको कि कहीं एलर्जिकल रिएक्शन वगैरह तो नहीं दे रहा है।
0: बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि हेयर डाई यूज करने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, और एलर्जिकल रिएक्शन के कारण होता है
0: जी,
1: क्योंकि आज के डेट में जो भी हेयर डाई आती है मैक्सिमम केमिकल्स इतने ज्यादा होते हैं और जो भी आप पढ़ रहे होते हो परचेज करते समय वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं।
0: जी बिल्कुल सही बात है, इसलिए कभी भी कुछ भी लगाने से पहले आप एक बार साइड से टेस्ट आप जरूर कीजिए, चेक जरूर कीजिए,
1: स्किन पे अपना कहीं लगा करके एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं एलर्जिकल रिएक्शन कुछ दे तो नहीं रहा है।
0: डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बचाव के लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे?
1: सबसे पहले एक अच्छा लाइफस्टाइल, और आपकी फैमिली में अगर किसी को इस ये बीमारी है काला मोतिया तो रूटीन चेकअप अपना और अपने फैमिली का जरूर करवाते रहें, हर साल एक बार 40 साल के अपने डॉक्टर को दिखाएं और स्पेशली बताएं कि मेरे फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा था, मेरे फादर को था, मेरे ग्रैंडफादर को था, फिर डॉक्टर और भी अवेयर होकर के उस चीज को कॉन्शियस होकर देख रहे होते हैं। गर्व नहीं करनी चाहिए कि मुझे बताने में हिचक हो कि मेरी फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा।
0: जब तक से हम खुलकर अपने चिकित्सक से बात नहीं करेंगे तब तक से वो पॉसिबल नहीं है कि वो हमारा सही ढंग से इलाज कर सके।
1: जब डॉक्टर को पता ही नहीं होगा तो कहाँ से पूरी चीजें कर पाएंगे।
0: डॉक्टर साहब, इस ग्लूकोमा जैसी बीमारी के बारे में विस्तार से आपने चर्चा किया और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सुन रहे होंगे वो भी काफी लाभान्वित होंगे, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, और जो जानकारी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं कम से कम इसको अपने जीवन में अमल करें, जिससे अगर किसी को ग्लूकोमा है या किसी आस पास में आपके जानने वालों को है तो कम से कम इतना अवेयर हो कि वो पेशेंट सही समय पे अपनी जाँच कराए और उस बीमारी की जानकारी सही है तो बीमारी कंट्रोल रहे, जीवन स्तर बेहतर या लंबे समय तक उसकी दृष्टि बनी रहे।
0: श्रोताओं, समय पर जांच और सही इलाज से दृष्टि हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। आपको हमारा कार्य

0: कार्यक्रम कैसा लगता है आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड नंबर 8211115। अब अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। संकलन एवं वाचन अख्तर इमाम अंजुम, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है हमारा भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी हम सुन रहे थे करी हम कौन बहाना एल्बम से ये गीत। इस गीत को स्वर और संगीत दिया था सर्वानंद ठाकुर ने, शब्द ट्रेडिशनल के। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत राजा पिया जानी एल्बम से, जिसे शब्द दिया है मोतीलाल मंजूल ने और गायक कलाकार एवं संगीतकार है भरत शर्मा व्यास।

राजा पिया जानी एल्बम से अभी हम सभी ये श्रृंगार गीत सुन रहे थे। इस गीत को शब्द, संगीत और स्वर भरत शर्मा व्यास ने दिया था और इसी के साथ लोकमाधुरी का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार। रसधार में आइए सुनते हैं मौसम सुहावन एल्बम से ये गीत। गायक कलाकार है मुकुल सिंह, गीतकार है अशोक शिवपुरी और संगीतकार है विनय बिहारी।

अभी आप सुन रहे थे पूर्वा ब्यार एल्बम से ये गीत विकी राजा वर्मा के स्वर में। मनीष माही ने इसे शब्द दिया था और छोटू रावत ने संगीत। और भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत बद्रा रे एल्बम से। गुंजन सिंह के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है शिशिर पांडे ने और शब्दों की माला पिरोई है रविंद्र ओझा ने।

अभी आप सुन रहे थे बद्रा रे एल्बम से ये गीत, और इसी के साथ रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती से, करे कुछ पल का इंतज़ार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नवाब आरजू की रचना आप सुन रहे थे। ललित का संगीता, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो को आपने सुना। फिल्म एल्बम रात का ये गीत हमने आपको सुनवाया। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कल्याण जी आनंद जी का सर्वाध्यकीय ये भजन आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी। अलका याग्निक और साधना सरगम के स्वरों में नास्तिक फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो

0: बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: राजेश्वरी सचदेव को आप सुन रहे थे एल्बम थी हुल्ले हुल्ला रे, नक्श लालपुरी के बोल थे अमर हल्दीपुर की तरह थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा का मोहन इस फिल्म का दो गाना आप सुन रहे थे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इंदिवर की रचना थी, अरुण पौडवाल की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदक की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला

0: में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये गीत आप सुन रहे थे, टाइटल सॉन्ग था आप आए बाहर आई फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हंसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म अप्रैल फूल से, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सेंटर बाबू, सुनगा गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार के बोल थे उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं, लम्हे फिल्म का गीत आपने सुना, शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाजें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की, और साथियों की भी आवाजें थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।

0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

0: बप्पी लाहिरी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: कल्याण जानन जी की तर्ज थी हिंदी वर के बोल, मुकेश की आवाज़, फिल्म सफर का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए श्रोताओं आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और भेज सकते हैं आप इस पते पर अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ चुके हैं श्रोताओं, तो अपने रेडियो श्रोताओं के लिए और सभी श्रोताओं के लिए एक बार आज की इबारत पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो कार्यक्रम है हमारा वो इबारत पर ही बेस्ड है। तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं और गीतों को कुछ चुनकर भी भेजा है। तो ये है आज की इबारत, वो बूंद फूल सी आसमान से चली जो कमर से कभी तो कभी सितारों से पूछा कि जमीन से मिलन कैसा होगा, मोहब्बत की कसम खाई है जो सीप से वो मोती सा बदन कैसा होगा, चेहरा शीशे का आंचल पानी का दिले बेताब ये जिंदगी का सफर कैसा होगा, कभी जमीन को देखूं तो कभी चांद को मौसम हिमाकत कहे जो मेरे इम्कान को, बदरा छूटा सफर की रात हुई दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर बर्बाद होने की चिंता बेकार थी, कुछ यूं ठहरी मैं सीप में कि बूंद से मोती बन तैयार थी। तो आप सभी ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं श्रोताओं, गीतों को भी चुनकर भेजा है और आपकी रेडियो सेट पर बिल्कुल शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत के कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं और गीतकार बताने हैं। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि आज के इस खूबसूरत और काव्यात्मक गद्यांश का मुख्य विषय है जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरकर आत्मखोज, धैर्य और रूपांतरण का सफर। ये पैराग्राफ एक सकारात्मक संदेश देता है। ये बताता है कि जीवन का सफर भले ही अनिश्चितताओं, डर और मुश्किलों से भरा हो, लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य है तो आप हर चुनौती को पार करके अपने जीवन को सार्थक बूंद से मोती बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को भी चुना है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत बारिश की बूंदों की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। बारिश की बूंद की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। उसी तरह आसमान से गिरती भी बूंदें अपने भविष्य को लेकर उत्सुक भी हैं और अनजान भी। अनेकों गिरती बूंदों को अपनी मंजिल का पता नहीं होता। रास्ते में बादल बिछड़ते हैं, पत्थर मिलते हैं, अंधेरी रातें आती हैं और कई बार लगता है कि सफर यहीं थम जाएगा, लेकिन हर बूंद का नसीब ऐसा नसीब मिट्टी में खो जाना नहीं होता। कुछ बूंदें सीप की गोद में ठहरती हैं और समय उन्हें मोती बना देता है। इसलिए सफर की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंद जो बन गई मोती, बादलों के आशियां से बिछड़ बूंदों का जमीन तक का सफर की दास्तां बयां करती इबारत अपनी खुशकिस्मती बदकिस्मती की सूरत हाल पर चिंतित सफर का अंत तह मंजिल सीप में आश्रित हो संतुष्टि सह सुखांत हुई। बूंद का ये सफरनामा होना चाहिए इंसानी दिनचर्या।

संदेश दी जाती है, विघ्न बाधा सामयिक होते हैं, मनोबल से मंजिल देर सवेर जरूर मिलती है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी मंजिल क्या थी और क्या आपको मंजिल पाने में कोई कठिनाई सामने आई। वैसे मंजिलों की राह कठिनाइयां तो बहुत सारी आती हैं। बूंद पर अगर कोई कविता आपने पढ़ी है या आपने खुद लिखी है तो आप हमें बता सकते हैं श्रोताओ। और इस गीत में आपको कलाकार भी बताने हैं और संगीतकार बताने हैं।

श्रोताओ, आपके शहर में बूंदों का क्या हाल है, यानी बारिश का क्या हाल है? बारिश हुई कि नहीं? वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमारे वाराणसी में यानी बनारस में तो बारिश नहीं हुई, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एक छोटी सी बूंद जब आसमान से उतर कर सीप के भीतर समा जाती है तो समय के साथ वही बूंद एक अनमोल मोती बन जाती है। यह सफर हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, इंतजार और धैर्य के बाद ही असली निखार आता है। बूंद से मोती तक का सफर दरअसल उम्मीद, मोहब्बत और जिंदगी के खूबसूरत बदलाव का सफर है, ऐसा ये लिखती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सीप ने बूंद से उसकी मंजिल नहीं

पूछी, बस उसे अपने भीतर जगह दे दी। शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जहां अपनापन मिलता है वहीं रहकर वो अनमोल बन जाते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है श्रोताओ। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि कौन से हैं कलाकार, जी हाँ, वैजयंतीमाला और देवानंद साहब नजर आते हैं इस गीत में। ज्वेल थी फिल्म का गीत था, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। और आरजू फिल्म के गीत में गीतकार थे हसरत जयपुरी, राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया गीत हमने आपको सुनवाया था। और एक सवाल और है आपसे कि आजकल बारिशों में एक फूल बड़ा नजर आता है श्रोताओ, और वो फूल क्या आपने देखा है? हमारे यहाँ तो इसे गुल मेहंदी का फूल कहा जाता था और हर जगह दिखाई दे जाएगा बारिशों के मौसम में। क्या आपने देखा है? वैसे कई रंग में खिलता है, आपको अगर पता हो, आपने अगर देखा हो या आपकी बगिया में अगर है तो आप बता सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब बूंद आसमान में है तो उसमें जिज्ञासा भी है और अनजाने का डर भी। दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर यह हमारे जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम किसी नए मोड़ पर कदम रखने से डरते हैं, कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। जब हम अज्ञात के डर को छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो जीवन की चुनौतियां हमें नष्ट करने नहीं बल्कि हमें निखारने और मोती बनाने आती हैं। जी हाँ, कष्ट तो होता है, बहुत सारी जो रास्ते में अड़चने हैं वो भी आती हैं, लेकिन फिर भी आगे का रास्ता यानी सफर तो जारी ही रहता है। यही हाल बूंद का है और हम सबका भी। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ और संगीतकार।

कोहिनूर फिल्म का गीत आपने सुना, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया, नौशाद की तर्ज थी। और इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और उन सभी श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो कार्यक्रम में नए जुड़े हैं। एक श्रोता ने हमारे लिखा है कि बनारस में छिटपुट बादल बरस रहे हैं और सुरीला सफर में फिर बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, संभावना है, लेकिन देखते हैं कि बरसते हैं या नहीं। तो इन्होंने गीत भी पसंद किया है, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, जिंदगी का सफर, तमाम गीत। एक और हमारे और श्रोता लिखते हैं कि मैं एक शेर पेश करता हूं अपने श्रोताओं की नजर करता हूं। सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को खराब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30 से 35 मोबाइल आपने खराब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफर प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है, जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा के अदृश्य हाथों में हाथ डालकर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों, नदियों, पौधों, सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें हैं श्रोताओं, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

शीनो मुमताज पर फिल्म आया गया ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं, प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है। हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं, वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी ही विनम्रता से धरती में समा जाती हैं। न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती हैं। अगर ये बूंदें अपने बादलों से बिछड़ने का साहस न करती तो शायद धरती कभी इतनी हरी भरी न होती। कभी कभी जीवन में बिछड़ना भी नई शुरुआत का कारण बन जाता है। यही अनंत सफर बादल से धरती, धरती से नदी, नदी से सागर और फिर सागर से बादल, सफर चलता रहता है कभी थमता नहीं। मुझे एक बात बताइए श्रोताओं, क्या आपने ओस की बूंदें देखी हैं और क्या इन्हें पत्तों पर कभी छुआ है? तो जरूर बताइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि बारिश के मौसम में बादल आसमान में छाए हों और बारिश न हो रही हो तब भी बूंदों का एहसास मन में बना रहता है। जादुई भी है बारिश, संगीत ले आती है, धुआं धुआं सा आसमां बना देती है, बादल भरे भरे गगरी सी छलकाती प्रतीत होते हैं और ऐसे में मन का हाल न पूछो, मन तरल हो उठता है। पिघलते आसमान धरती को कितने सुकून से भर देता है ये तो हम चारों तरफ की हरियाली देखकर जान जाते हैं।

जो मोती हम पहनते हैं श्रोताओ, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें जरूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो जरूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो, बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतजार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहां खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदें भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंद्रधनुष का दूसरा नाम भी है मेघ धनुष। स्वाति नक्षत्र 22 तारीख से बैठा है, इनका पानी अमृत समान होता है। थोड़ा संचय कर सकते हैं तो करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शीशे की बोतल में भर कर रखिए, ऐसा ये कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मीनू मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है। और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे

कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसी नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता, तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूं का लिखा ये गीत था राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूट कर पानी की बूंदें जब हैं गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती, स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती, बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसी संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदें दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाई जब नन्ही वर्षा की बूंदें चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी, हवा की झोंकों से बातें करती।

फिल्म मधुमति का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है, और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरनिया, और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी यह ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचा

पर्दे से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजोकर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत हैं, वन हैं, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओं? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफर पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं? और क्या ऐसा सफर आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफर पर हैं? ये कौन हैं कलाकार श्रोताओं जो सफर पर निकले हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्कुरा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एफएम पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

0: एक हमारी श्रोता लिखती है कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सरक कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।
1: ये

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में

0: प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस विधेयक पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन से परीक्षा प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। वे संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में डेयरी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। नालंदा के बिहार शरीफ में विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में उत्पादित डेयरी उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कल शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए उद्योग भवन के पास समाप्त होगा। रोड शो में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इधर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में आज रोड शो करेंगे। राजद के रोड शो की शुरुआत जक्कनपुर से होगी। जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पश्चिम चंपारण के बगहा में बनने वाले 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया। स्थानीय विधायक राम सिंह ने इसकी नींव रखी। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा में हिजब मुखालिफ के हंगामे के दौरान आज अवामी इम्तहान तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल ऐवान में पेश किया। यह बिल अवामी इम्तहान एक्ट 2024 में तरमीम की तजवीज़ लाता है। बिल पेश किए जाने के दौरान अरकान हिजब मुखालिफ ने नीट मामले पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस कार्रवाई पर चर्चा का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इम्तहान में बेहतरी की समत में यह बिल पहला अहम कदम है और इस पर मुनासिब गुफ्तगू होनी चाहिए। उन्होंने इराकीन से तावुन और मुसबत गुफ्तगू की अपील की। हंगामा जारी रहने पर ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया गया। हिजब मुखालिफ के हंगामे के सबब चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट इम्तहान पेपर लीक मामले के मद्देनज़र तलबा के मुजाहरे के दौरान पुलिस ताकत के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के इल्ज़ाम से मुतालिक कई रिटों पर कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जख्मी पुलिस अमलों की कुंबा की रिट पर भी समाअत करने का फैसला लिया है। इस बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पुरअमन और जायज़ एहतजाज मुजाहरा आइनी हक है। मरकजी हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अदालती कार्रवाई में तआवुन करेंगे। बिहार शरीफ में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में डेयरी के शोबे को फ़रोग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में तैयार होने वाली डेयरी मसनूआत को मुल्की और आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला ने 20 मैट्रिक टन रोज़ाना पैदावार की सलाहियत वाले दही और लस्सी प्लांट का संग बुनियाद रखा। इसके साथ ही कम्फर्ट के ज़ेर एहतमाम जारी APCL पेट्रोल पम्प और सुधा कैफेटेरिया का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वज़राए आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, देही तरक्की के वज़ीर शरवण कुमार, मवेशी परवरी और माहीगीर के वजीर नंद किशोर राम समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। बांकीपुर असम्बली ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र सभी जमातों ने तशहीर में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल शाम तशहीर का शोर थम जाएगा। इससे कबल आज भाजपा के कौमी सदर नितिन नवीन पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार की हिमायत में रोड शो कर रहे हैं। पार्टी के रियासती सदर संजय सरोगी ने बताया कि रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर मुख्तलिफ राहों से गुजरते हुए उद्योग भवन के पास इख्तिताम पजीर होगा। रोड शो में पार्टी के कई सीनियर लीडर शामिल हो रहे हैं। इधर राजद के कारगुजार सदर तेजस्वी प्रसाद यादव भी पार्टी उम्मीदवार रेखा कुमारी की हिमायत में आज रोड शो करेंगे। राजद की रोड शो की शुरुआत जकनपुर से होगी। जनस्वराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर असेंबली हलका के मुख्तलिफ महलों में लगातार अवामी राबता और जलसा कर रहे हैं। वहीं कई आजाद उम्मीदवार भी जोश के साथ तशहीर में लगे हुए हैं। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया समेत रियासत के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी इलाकों में कई मकामात पर बारिश की इंतबाह जारी की है। दरी असना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे ज़्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मगरबी चंपारण के बघा में बनने वाले 100 बेड के सब डिवीजनल अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया। मकामी रुकन असम्बली राम सिंह ने इसका संगे बुनियाद रखा। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के कोऑपरेटिव हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। अररिया जिला के अलग अलग थाना हलकों में खसूसी छापामारी मुहिम चलाकर पुलिस ने 21 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी के 1819 मोबाइल फ़ोन, ममनुआ कोडिन सिरप और दीगर काबिल एतराज़ अशिया बरामद किए गए हैं। अरवल ज़िला के करपी ब्लॉक के परियारी पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से कानूनी बेदारी कैंप का इनाकाद किया गया। कैंप में लोगों को मुख्तलिफ कानूनी तजावीज़ की मालूमात फराहम की गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

आईसीएल असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य वन संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य

0: जी किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

0: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
2: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश को आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: दुनिया।
1: किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में छोटी सी मुलाकात फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, रहिए विविध भारती के संग।

0: सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार। और दीपा जी आपको भी नमस्कार।
2: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार।
1: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई। हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, हेल्दी नमस्कार करते हैं। दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं,
2: जितना और स्वास्थ्य भी।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य जरूरी है। और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से। और अब क्योंकि बारिश का मौसम है
2: जी,
1: यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है, कुछ गर्म हो जाता है।
2: गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता या हमारी बहन कोई
1: जी
2: अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया। तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की और अब बारिश का मौसम है तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं। तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर अपने आप को बचाने के लिए।
2: हाँ,
1: उन चीजों की हम बात करेंगे।
2: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में बिजली के तार कहीं खुले हैं, कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
1: बिल्कुल
2: करेंगे।
1: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं तो उस वक्त आप अपना बचाव से करेंगे। और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
1: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है
2: जी।
1: लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो इसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
2: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
1: हाँ,
2: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्की दी रोटी और सरसों का साग, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता
1: है। बिल्कुल, अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, इसकी बहार ही बहार होगी।
2: बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें।
1: हाँ,
2: इस बारे में ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा,
1: हाँ,
2: इस बारे में जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल,
2: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
1: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं
2: जी।
1: लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है
2: जी।
1: लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
2: बिल्कुल। और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
1: कहानी का। हाँ, तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
2: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी
1: ये तो हुई

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।

0: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
1: कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।
2: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए हैं नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
3: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं, ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
2: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
3: मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
2: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
3: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
2: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
3: अच्छा, स्वीकार है, एक सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
2: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
3: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
4: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में दो एक दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहां अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई, ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को एक सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा, वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है, मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है, इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ

0: गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
1: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था, मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं, उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है, तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
0: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
1: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं, तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता, अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं, वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
2: चाचा जाने भी दो।
1: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है, जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं, जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है, चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, ये भी एक लड़ाई ही है, अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा, उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
2: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है, पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है, पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
1: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है, मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं,

0: जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो, तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
1: चाचा, बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
0: बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
2: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
1: चाचा, बापू से ये हाल कहां है?
0: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और दो दो तीन तीन दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
1: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
0: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
1: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
0: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
1: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
0: अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
3: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
4: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा, और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
5: बिल्कुल।
4: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
5: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना,
1: हाँ
0: तो ये अगला जो जो 1 घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप
1: बिल्कुल
0: सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
1: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे और वाकई बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक, बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं,
0: जी
1: लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें,
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना।
1: कहा।
0: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
1: हाँ
0: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
1: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यावसायिक तौर पर, दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से, हाँ, और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है। तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता,
1: ये तो बात सही है।
0: बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता।
1: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है।
0: बिल्कुल
1: कसमें खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेगा लिया लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
1: हाँ
0: ऐसा नहीं होता है ना
1: बिल्कुल नहीं होता।
0: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों,
1: बहुत सही बात
0: है
1: कही
0: ना,
1: तुमने।
0: या
1: हाँ
0: फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हुआ हो।
1: हाँ
0: इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध, चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
1: भरोसा यानी विश्वास, बहुत सही
0: हाँ,
1: बात कही
0: और
1: तुमने।
0: जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग-अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे ही भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता,
0: जी
1: क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं, तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है, तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं, वो
1: हाँ
0: रिश्तों को
1: आ
0: तोड़
1: जाते हैं।
0: देते हैं।
1: हाँ
0: इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जो हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये

0: वजह बन जाता है।
1: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
0: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
1: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
0: हाँ।

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो
1: जी
0: वाकई दुख पहुंचता है।
1: बिल्कुल। और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती
0: और
1: है।
0: उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम।

0: ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समर पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे
0: बहुत
1: की।
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं आगे। उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते हैं ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनाकर बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना

0: आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसमें हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं 1 घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा। पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
0: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या
1: और
0: ही बात है।
1: भाई
0: और
1: बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर ये भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान हैं, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
0: बिल्कुल,
1: एक
0: और
1: संदेश में
0: बहुत
1: है।
0: सारे संदेश आए हैं बिजली
1: हाँ
0: को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीज़ों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत ज़रूरी कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहती है कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है। ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें, और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्ट्रे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए इसका ख्याल रखें, बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें, कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
1: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं, कई बार देखते हैं ना हम, तीन तार होते हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का
0: अर्थिंग
1: तार
0: का
1: होता है, तो
0: जी
1: वो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: चल।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है। तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्डी, पालक एक गड्डी, बथुआ एक गड्डी, मेथी एक गड्डी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर। और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी ठक के मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है। उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो आप अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा
1: आसान हो जाता है। और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके? क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था,
0: जी,
1: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
0: जी,
1: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया एक बार और।
0: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
1: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली, और मैंने बीएससी भी लिया था। और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी। अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए,
0: जी,
1: क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
0: जी,
1: पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको 1 साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ, बाद में आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए हैं।
0: जी,
1: खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
0: ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट,
1: जो टिपिकल टर्म है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है
0: जी।
1: ऑप्थेल यानी आई, तो आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है
0: जी। इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
1: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है, इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
1: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है।

0: नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है, और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूँ, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए,
1: वो कोई
0: कहीं दूर देखे।
1: फॉर्मूला बताया गया ना?
0: ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मूला है,
1: जी
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन
1: जी
0: एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो 1-2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता
0: और
1: है।
0: दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे, कोई
1: जी
0: साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो
0: जब से
1: ज्यादा चमकीली होती है।
0: ज्यादा चमकीली रहती हैं तो उसका
1: जी
0: जो ब्राइटनेस रहता है, तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है।
1: जी

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरदर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स हैं, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
0: अच्छा,
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी,
0: जी,
1: बच्चों
0: जी.
1: में भी देते हैं जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
0: जी
1: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
0: ओके,
1: अब समझिए जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, आप शुरुआत तो कर लेंगे आराम से चलते जाएंगे लेकिन
0: सस्टेन करना मुश्किल
1: होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती
0: वो
1: है।
0: भी थक जाती है।
1: जी
0: क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा,
1: नहीं होगा,
0: तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिरदर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है।
1: नहीं नहीं आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
0: जी जी,
1: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
0: जी
1: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं, बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है, जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है जिसको ग्लॉकोमा कहते हैं।
0: जी जी,
1: ग्लॉकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
0: अच्छा,
1: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
0: जी,
1: वो
0: जी
1: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आप आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
0: अच्छा अच्छा
1: क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है।
0: जी जी,
1: ग्लॉकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लॉकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
0: ओ गॉड,
1: तो क्योंकि आंख का

0: एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है कि
1: ओके
0: आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है।
0: सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है।
1: ओ
0: अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई।
0: रोशनी गई
1: एक उम्र के बाद,
0: जी।
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे
0: जी
1: हैं, ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराएं,
1: उसका
0: और
1: फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
1: जी बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: सेम चीज है,
1: कॉमन सेंस ये
0: कॉमन
1: आप
0: सेंस
1: लोगों
0: है।
1: के, तो ये
0: चालीस
1: हमें दिमाग में बिठा लेना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: चे 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन
1: जी
0: ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है कोई तो आपको आनी ही है।
1: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं।
0: संभावना 50% है, माता के साइड से या पिता के साइड से,
1: जी जी
0: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहाँ पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता। हमारे
1: जी
0: पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहाँ से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहाँ से आ गया,
1: सही बात
0: कहीं
1: है,
0: मामा मामी दादा दादी नाना नानी
1: कहीं
0: कहीं
1: से
0: से भी
1: भी
0: आ सकते हैं।
1: पूरे फैमिली
0: तो
1: ट्री में।
0: बीमारियां जो हैं वो जो जेनेटिकली आती हैं हमको, विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीज में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने एक साल उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक 2 घंटे निकालिए, सिंपल।
1: बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
0: वो भी
1: एक उम्र
0: जांच
1: के
0: कराए।
1: बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर
0: जी
1: वगैरह, जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं।
0: जी
1: यहां
0: सही है।
1: एक दिलचस्प बात यह है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा।
1: जी
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया।
1: जी
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे
1: हाँ
0: जनरेशन में तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं।
1: जी
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है,
1: जी
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए।
1: जी
0: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को,
1: जी
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
1: पेशेंट की बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछता हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है ये गलत है मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
0: एग्जैक्टली।

0: रहा है मैं लूं कि नहीं लूं।
1: तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है। आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं,
0: जी
1: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी, वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
0: डॉक्टर नहीं
1: आंख
0: है।
1: डॉक्टर नहीं है जी। ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है। आई एम नॉट बिलिटलिंग इट। वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है। मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आँख के आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आँख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है। चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है,
0: जी
1: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये है। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए, तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होने चाहिए।
0: बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं।
1: जी
0: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है,
1: जी
0: इससे
1: जी जी
0: बचना चाहिए।
1: नहीं, टू ईच देयर ओन। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: जी
0: जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता,
1: जी
0: और दूसरी तरह की भी जांच होती है। वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं, वो
1: हाँ,
0: बिठाया जाता है बहुत देर
1: देखिए,
0: तक।
1: ये एक साइंस है
0: जी
1: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप,
0: जी
1: और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है, या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो। बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से
0: बिल्कुल
1: लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
0: नहीं
1: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
0: जी, बिल्कुल
1: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है,
0: जी।
1: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम
0: यस
1: चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं,
0: जी
1: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
0: जिम्मेदारियां होती हैं।
1: जिम्मेदारी और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना। ऐसे नहीं
0: बिल्कुल
1: बोल सकते कि आप घर बैठ रहे हैं तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: सही है। और डॉक्टर साहब, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके
1: जरूर
0: बाद आगे बढ़ते हैं,
1: जरूर।
0: क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने
1: अच्छा, ओके,
0: चाहिए। तो
1: श्योर,
0: यहां गाना सुनते
1: ओके,
0: हैं, है
1: जरूर,
0: ना।
1: थैंक यू।
0: आंखों में क्या जी, फिल्म का नाम है
1: अरे
0: नौ दो
1: वाह,
0: 11।
1: 9 2 11, बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफ़ी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स
0: जी,
1: में
0: जी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज़ वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और

0: और चश्मा नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है। ये दूसरी चीज है टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज है काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए, तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो आंख बाहर निकल जाती है। आपने दोनों देखा रहेगा बच्चों में, एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए।
1: जी।
0: तो ये जो है अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है।
1: जी। और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी।
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए।
1: जी, कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी के वजह से भी होती है, अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं, शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं, अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना
0: जी
1: चाहिए, और वो तमाम चीजें हैं। पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको ऑनेस्टली कहता
1: जी
0: हूं, वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम
1: जी
0: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं, आप
1: बिल्कुल
0: कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है
1: बिल्कुल
0: जिसके
1: बिल्कुल
0: अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है।
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत जरूरी है, आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा बढ़िया है आपका, उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल, आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे पीएचडी आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
1: विद्वान
0: और सभी
1: लोग हैं
0: बहुत ही हमसे बड़े पीएचडी हैं सारे।

0: अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियाँ ऐसे रगड़ो तो आपके आँख का नंबर चले जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि डॉक्टर साहब अगर हम आपकी ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे, मतलब कर लगे रहो, तो बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही आप मुझे आके बताओ। तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, जीएम डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
1: बिल्कुल
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, वड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी, इंस्टेड ऑफ
1: बिल्कुल
0: हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते
1: जी
0: हैं, जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग
0: एकदम
1: तरह की सावधानियां।
0: उसकी अलग तरह की सावधानी है।
1: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट,
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक
1: जी
0: चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहां से।
1: जी जी जी
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है, और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो पहले
1: जी
0: तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसे
1: हाँ
0: नहीं है, एक बात, और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा, जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है, आंख का नंबर आंख के शेज और शेप और साइज के ऊपर आता है, वो
1: जी
0: आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था, तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया, इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया,
1: हाँ बिल्कुल, तो
0: आप
1: फिर
0: समझे?
1: आप
0: तो
1: इसमें भी
0: इस
1: सवाल नहीं उठा सकते।
0: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है, सवाल तो जरूर उठाइए।
1: जी जी
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है, जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूं, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं,
1: जी
0: और ये उल्टा साइंस है, जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
1: वो क्लियर
0: वो
1: बनेगी।
0: क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए शेप
1: बिल्कुल
0: और साइज में, ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं, कॉन्वेक्स
1: बिल्कुल
0: और कॉनकेव मिरर्स, दोबारा देख
1: यस
0: लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल, नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है।
1: जी
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए, सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो है बेचारे, उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है। ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है आंख की,
1: जी।
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं, ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है, और ये मुझे 15 साल 20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है, बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो। मैं तो
1: बिल्कुल
0: ऑलवेज कह रहा हूं, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए दुनिया में, सबसे खूबसूरत चीज क्या है, दृष्टि।
1: बिल्कुल
0: अगर आप दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
0: जी
1: अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया है तो फौरन

0: उसे चश्मा बनवा कर देना
1: और
0: चाहिए।
1: और 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है ये ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
0: जी
1: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आंख बच्चे की नजर देखिए।
0: बिल्कुल।

0: 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया। दोबारा दोबारा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है,
1: अच्छा
0: उसका एक कैलकुलेशन है। और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है, तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा, 2 साल तक नंबर स्टेडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
1: तो
0: और
1: नहीं कर
0: लेजर हो
1: सकते।
0: जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आंख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
1: ओहो
0: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो
1: जी
0: जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
1: करेक्ट।
0: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं, ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है, एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा, तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो अगर 20 पे आपने करवा लिया तो,
1: जी
0: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है, कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो काफी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है।
1: जी
0: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे,
1: जी
0: आंख
1: जी
0: जो है तो वही है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ,
1: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा
0: उसका
1: है।
0: सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है,
1: जी
0: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
1: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है।
0: जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
1: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
0: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है बुजुर्ग लोगों के, और ज्यादातर मोतिया होने के ऑपरेशंस किए जाते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राईफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है,
1: जी
0: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं,
1: जी बिल्कुल
0: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है, कि जो अभी आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन
1: जी
0: है, तो
1: जी
0: आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है, हम
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है, आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबडी, जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया।
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है,
1: जी
0: और हम कितनी भी कोशिश करें, तो जैसे मैंने कहा अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहां वहां है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम

0: साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं,
1: जी
0: वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि
1: जी
0: चश्मा हटाया जा सकता है?
1: जी तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है।
0: जी
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी
1: उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की, या

0: हैं,
1: जी
0: बिकॉज इट इज नॉट अ, अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज्ड सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा
0: आंख
1: आपने।
0: तो, और आंख को तो सबसे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा कैसे, आंखों के थ्रू ही दिखेगा।
1: परफेक्ट बात है। यहां एक गाना सुनते हैं
0: जरूर।
1: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी
0: अरे
1: सपने
0: वाह।
1: सजाए।

दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे।

0: अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा, अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के

अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम और 6:05 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार।

हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:10 पर, और शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत।

शाम 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या और भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक धारा आप सुन सकते हैं रात्रि के 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदगी और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने, और 10:55 पर हम जानेंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 11:00 दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और सभा का समापन होगा हमेशा की ही तरह रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजय गिरी की आवाज़ से। एल्बम का नाम है तुमको पूजन गणेश। संजय गिरी के बोल हैं और सोहन लाल का संगीत है।

संजय गिरी की आवाज़ में भी आपने सुना तुमको पूजन गणेश एल्बम का ये गीत। और अब लीजिए सुनिए आशीष बंसी की आवाज़ में, एल्बम का नाम है तेरा दर्शन अभी बाकी है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अनुराधा पौडवाल के गाए इसी गीत के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए महिला भवनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वाली सखियों का आज के इस घर आंगन कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। सखियों, बदलाव यानी परिवर्तन प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। बदलाव सृष्टि का शाश्वत नियम है। हर चीज़, हर पल, हर क्षण बदल रहा है। आप ऐसा महसूस कर रही होंगी, सेकंड मिनट में घंटे, दिन और रात, महीने, वर्ष में और ऋतुवे, मौसम, सब कुछ बदलता रहता है। हमारा जीवन भी बदलता रहता है। हमारा जीवन बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा के चक्र में बदलता रहता है। यानी कि इस कुदरत में हर चीज़ एक समय के बाद बदलती रहती है और यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। और इस बदलाव से कोई भी अछूता नहीं है। हम सब भी अछूते नहीं हैं। जब कुदरत में ही परिवर्तन है तो हम सब में भी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना ही हमारे लिए भलाई है। अगर हम परिवर्तन के साथ यानी बदलाव के साथ चलते हैं तो हम कामयाबी के रास्ते पे जाते हैं। अगर हम बदलाव को नहीं बदलाव

वो नहीं लेते हैं, बदलाव के साथ नहीं चलते हैं, तो हम पिछड़ जाते हैं, काफ़ी पिछड़ जाते हैं। क्योंकि जो लोग जकड़े रहते हैं कि नहीं हम नहीं बदलेंगे कोई भी चीज़, हर दौर की अपनी एक प्रगति होती है, एक अपना समय होता है, उसके साथ जो नहीं चलता है वो बहुत पिछड़ जाता है। और इन सब चीज़ों में परिवर्तन समय के साथ होता रहता है, यानी सखियों जो हमने कहा कि प्रकृति में हर चीज़ में बदलाव होता है, तो जब इन सब चीज़ों में बदलाव होता है या समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, ये दुनिया पल पल बदलती रहती है, तो दुनिया के साथ हम भी बदलते रहते हैं, यानी हमको बदलना पड़ता है। क्योंकि बदलाव की बयार जब चलती है तो हमें बदलना ही पड़ता है। समय के साथ जब हम खुद को बदल कर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तभी हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, खुद को उन्नति तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस मामले में हम महिलाओं ने, यानी नारी शक्ति ने ये साबित किया है कि हमने समय के साथ खुद को बदला है, हमने महसूस किया है कि अगर बदलाव हो रहा है तो हमें बदलना जरूरी है, और अपनी भूमिका सिर्फ घर के अंदर तक सीमित ना रख के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका हम महिलाएं निभा रही हैं स्वयं को बदल करके। सखियों, हमारा देश भारतवर्ष एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश रहा है, जहाँ शुरू से ही यानी अनादि काल से ही महिलाओं को समाज में प्रमुख स्थान रहा है। और शुरुआत के दौर में अगर देखा जाए तो महिलाएं स्वयं अपना वर चुनती थीं, विद्या, शिक्षा, साहित्य, राजनीति हर क्षेत्र में आगे थीं। लेकिन समय का कालखंड बदला और विदेशी शासन काल में समाज में महिलाओं के साथ बहुत सारी कुरीतियाँ और विकृतियाँ जुड़ गईं, हमारे देश की महिलाओं को उनके ऊपर थोप दी गईं। यानी जब हम गुलाम थे, बाहरी लोग आकर हमारे देश पे शासन कर रहे थे, तो महिलाओं की आत्मरक्षा, उनकी अस्मिता, गरिमा, उनकी सुरक्षा के लिए महिलाओं को घर के अंदर तक सीमित कर दिया गया या महिलाएं स्वयं सीमित हो गईं। लेकिन सखियों, समय बदला, समय ने करवट ली, हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत में महिलाओं ने पूरी गरिमा, आत्मसम्मान के साथ हर क्षेत्र में समानता के साथ आगे बढ़ने का महिलाओं को मौका मिला, और इस अवसर को नारी शक्ति ने पूरे चुनौती और उत्साह के साथ जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का, साहित्य का, तकनीक, उद्योग, रक्षा, अंतरिक्ष, राजनीति, खेल, विज्ञान, सड़क, संसद, जमीन, आसमान, घर, कार्यालय, हर जगह महिलाओं ने इस बदलाव को महसूस किया और वे अग्रणी भूमिका में आई और अभी हैं। है ना कितनी अच्छी बात सखियों, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं और काफ़ी आगे निकल गई हैं। जिन महिलाओं ने ये सोचा कि हाँ, हमें ये मौका मिला है, हम हर चीज़, हर क्षेत्र में, हर जगह पे अपनी पहचान बना सकते हैं, वे महिलाएं आगे आईं और देश की सभी महिलाएं इस में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और आज के इस वर्तमान समय में नारी की भूमिका तेज़ी से बदल रही है, हम नारियां किसी से कम नहीं हैं, और हमारी बदलती भूमिका से न केवल हमारा अपना जीवन बदला है, बल्कि पूरे देश का भविष्य भी हम बेहतर और मजबूती से बदलने के लिए तत्पर हैं। तो हुई ना सखियों कि हम महिलाओं की भूमिका जो है कितनी महत्वपूर्ण है, और आज के दौर में हम नारी शक्ति अपनी बदलती भूमिका को महसूस भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे पीछे जो हमारी नारी शक्ति हैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें आगे लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सखियों, ये हुई हम महिलाओं की बदलती भूमिका पर बातें, और अभी हमारे कार्यक्रम की का बदलाव ये है, परिवर्तन ये है कि हम कुछ बातें करने के बाद संगीत की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं ये गाना।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: सखियों,

अग्नि, हवा, जल, नव और पृथ्वी यानी मिट्टी। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक इस मिट्टी की गोद में रहते हैं, पलते बढ़ते रहते हैं। मिट्टी से हमारा गहरा नाता है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हम सब मिट्टी के साथ साथ चलते हैं, इस मिट्टी में समा जाते हैं, खो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है सखियाँ कि मिट्टी के बिना हमारा जीवन यापन अधूरा है। हम सब मिट्टी में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के अन्न यानी अनाज, खाद्यान्न से लेकर फल फूल जड़ी बूटी, ये सब पूरे जीवन उपयोग में लेते हैं। लकड़ी, फर्नीचर, इमारतें, ये सब पूरे जीवन उपयोग करते हैं जो हमें मिट्टी की गोद से, मिट्टी यानी धरती जमीन से मिलता है। इसके साथ ही साथ मिट्टी से बने तरह तरह की वस्तुएं भी हम प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन जो हमारे सेहत के लिए वरदान हैं, वहीं पर्यावरण के रक्षक भी हैं। सखियों, एक समय था जब सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में ही खाने बनाए जाते थे, लेकिन आज के दौर में तो तरह तरह के मेटल हम यूज करते हैं और कुछ मेटल हमारे लिए नुकसानदायक हैं। जो बहुत पहले के समय में जो बहुत अमीर लोग होते थे वो सोने चांदी के बर्तनों का उपयोग करते थे, तांबा पीतल के बर्तनों का उपयोग करते थे। उन बर्तनों से तो बहुत फ़ायदा होता है खाना खाने से, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो लोग जो है कुछ ऐसे मेटल होते हैं। लोहे के बर्तन में खाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एक एल्युमिनियम का बर्तन होता है उसमें खाना खाना बनाना वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो जिनके पास कम पैसे हैं, उनका बजट कम है, वो लोग मिट्टी के बर्तन को यूज कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन कोई भी हो, गरीब अमीर, कोई भी किसी भी वर्ग का, उसके लिए सेहत का खजाना है। और मिट्टी के बर्तन में खाने से सेहत अच्छा रहता है और वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि जब हम चाय पी के, सखियों याद होगा जब हम लोग पहले, आज के 10-20 साल पहले जब कहीं जाते थे तो हमें ट्रेन से उतरते, बस से उतरते ही मिट्टी के कुल्हड़ में मिलते थे चाय, चुक्का भी कहीं कहीं बोलते हैं। वो पी करके चाय अगर हम कहीं मिट्टी में फेंक देते थे तो वो मिट्टी में ही मिल जाता था। आज प्लास्टिक का दौर है, कितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। ये प्लास्टिक ना सड़ता है ना गलता है। तो ये होती है मिट्टी की खासियत। मिट्टी के बर्तन अगर फूट भी गए, टूट भी गए, आपने उन्हें कहीं खाली ज़मीन पर ले जाके फेंक दिया, तो वो मिट्टी में ही घुल मिल जाते हैं। ये होता है पर्यावरण इको फ्रेंडली। तो मिट्टी के बर्तन गरीब हों या अमीर हों, सभी लोग खरीद सकते हैं, सभी लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी बरतना होता है क्योंकि ये जल्दी टूट जाते हैं, तो उन्हें अगर आप सावधानी से इस्तेमाल करेंगी तो मिट्टी के बर्तन हर तरह से फ़ायदेमंद हैं। और मिट्टी से और भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मिट्टी के बर्तन के साथ साथ मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के फूलदान, सुराही, घड़ा, कप, प्लेट, ये सारी चीज़ें मिट्टी से ही बनाई जाती हैं। और उनमें कई तरह के रंग भरकर, डिज़ाइन बनाकर उन्हें बेहद खूबसूरत आकार में बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं और उन्हें अगर हम प्लास्टिक के जगह यूज करें तो बहुत अच्छा है। मिट्टी से ईंटें भी बनाई जाती हैं, जिनसे एक से बढ़कर एक इमारतें बनाई जाती हैं, भवन बनाए जाते हैं। और पहले के समय में तो घर भी मिट्टी से ही बनाए जाते थे, लेकिन आज के दौर में तो मिट्टी के घर होते नहीं हैं और सभी घर मजबूत पक्के ईंटों से बनाए जाते हैं, वो अच्छा भी है। और सखियों, कुम्हार के चाक को तो हम सब ने देखा है, कितनी अच्छे से कुम्हार आकार देता है मिट्टी की वस्तुओं को बनाते समय। चाक एकदम नाचते रहता है, चाक बहुत अच्छा लगता है। बचपन में हम सब देखते थे, अब तो उतना नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये एक कला है जो कुम्हार बनाता है अपनी चाक पे, ये बेहतरीन कला है और ये मिट्टी की कला है। और इस कला को हमेशा जीवंत रखना है और हमें पर्यावरण को बचाना है तो हम मिट्टी के तरह तरह की वस्तुओं को इस्तेमाल में रख सकते हैं। हम पौधा लगाने के लिए मिट्टी का गमला खरीद सकते हैं, हम फूलों को सजाने के लिए घर के अंदर मिट्टी के तरह तरह के फूलदान मिलते हैं उन्हें खरीद सकते हैं, हम खाना बनाने के लिए आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मिट्टी के बर्तनों को इतनी सुंदर और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है कि उनमें मजबूती भी आ रहा है, तो उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए सखियां, अगर हम मिट्टी के बर्तन में बनाए हुए खाने को खाते हैं तो हमारा खाना

हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह हम मिट्टी के बर्तनों का और मिट्टी से बनाई जाने वाली बहुत सारी वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग करके मिट्टी के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे कुम्हार, उनका जो जीविकोपार्जन का ये आधार है, उनके आमदनी को बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम मिट्टी की वस्तुओं को प्रयोग करेंगे तो हमारे कुम्हार भाई जो इस रोज़गार को करते हैं, उनकी भी आय को काफ़ी बढ़ाने में हम सहयोग करेंगे। तो क्यों ना सखियों, आज से हम प्लास्टिक को करें बाय बाय और मिट्टी से जोड़ें नाता, क्योंकि हम इस मिट्टी के ही हैं। तो अब चलिए सखियों, चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गाना। लेकिन एक वादा है कि हम मिट्टी के वस्तुएँ ज़रूर प्रयोग में लाएंगे।

सखियों, अभी इस गीत को सुनने से पहले हम बात कर रहे थे मिट्टी की, कि मिट्टी की वस्तुएं हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है। और सखियों, हमारे देश में हमेशा, हमारा देश सांस्कृतिक देश है, यहाँ हमेशा पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं। हर मौसम में एक अपना त्यौहार है, और जब कोई त्यौहार आता है तो हम पूजा पाठ करते हैं, दिए जलाते हैं, या हम रोज़ घर के दैनिक पूजा पाठ में भी दिए जलाते हैं। तो जब हम दिए जलाते हैं तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए जलाएँगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हमारे जो कुम्हार भाई हैं जो इस व्यवसाय को करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर दिवाली आ रही है तो आने वाले 2 महीने बाद दिवाली आएगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदें, और जो भी मिट्टी के आइटम बनते हैं दिवाली के लिए वो हम खरीदें, या कोई भी पर्व त्यौहार है तो हम मिट्टी के ही बर्तन ज़्यादा खरीदें, क्योंकि इससे हम सबको लाभ है। और सखियों, अब बात करते हैं ठुमरी की रानी गिरजा देवी जी के बारे में। ठुमरी की रानी के नाम से मशहूर भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी जी संगीत की दुनिया का जाना माना चेहरा थीं। उनके चाहने वाले उन्हें बड़े प्यार से अप्पा जी कहकर बुलाते थे। गिरजा देवी जी बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका रही। ठुमरी गायन को संवार कर उसे लोकप्रिय बनाने का आपका बहुत बड़ा योगदान था, यानी गिरजा देवी जी का बहुत बड़ा योगदान था। एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं ठुमरी गायक के रूप में गिरजा जी। गिरजा देवी जी का जन्म 8 मई 1929 को कला और संस्कृति की प्राचीन नगरी वाराणसी यानी बनारस में, आज का जो हम बनारस बोलते हैं, उसमें हुआ था। उनके पिता रामदेव राय एक संपन्न जमींदार थे और संगीत कला के बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही गिरजा देवी जी को यानी अपनी पुत्री को संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी, उनके शिक्षा के लिए संगीत के का अध्यापक रख दिया। उनके सबसे पहले संगीत गुरु पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा जी थे। 9 वर्ष की आयु में ही पंडित श्री चंद्र मिश्र जी से उन्होंने संगीत की विभिन्न शैलियों में शिक्षा प्राप्त की। इस छोटी सी उम्र में ही एक हिंदी फिल्म याद रहे, जिस फिल्म का नाम है याद रहे, में गिरजा देवी जी ने अभिनय भी किया था। उन्हें संगीत के लिए जितना उनके पिताजी ने हौसला दिया था, उनकी माँ और उनकी दादी इस चीज़ का बहुत विरोध करती थी, उनके बहुत ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उन्हें नहीं उनकी दादी को और उनकी माँ को नहीं पसंद था कि वे संगीत सीखें, क्योंकि उस समय अच्छा कुछ लोगों की थिंकिंग होती थी, विचार होते थे, अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, और जो किस्मत को मंजूर होता है वो हर अड़चन और बाधा के बाद भी इंसान को उस मंजिल पर ले ही जाता है। सखियों, ये एक बार गिरजा देवी जी ने बताया था कि 8 साल की उम्र आते आते संगीत मेरा सब कुछ बन चुका था। आपने न केवल ठुमरी, टप्पा, ख्याल का गायन सीखा, बल्कि बनारस के आसपास के जो क्षेत्रीय गायन कला होती है, और चैती, होरी, बारामासा भी सीखा, और उन्हें अपना एक अलग ही रंग दिया। रेडियो पर आपका गायन पहली बार 1949 में इलाहाबाद ऑल इंडिया रेडियो पर शुरू हुआ, और गिरजा देवी जी ने रेडियो के लिए भी बहुत कार्यक्रम किए। लोग उन्हें सुनते तो सुनते ही रह जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते, उनके सुर लोगों के मन मोह लेते थे। और 1951 में आरा बिहार में आपका पहला सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम हुआ। 1980 में कोलकाता के ITC संगीत अनुसंधान अकादमी और 1990 के दशक की शुरुआत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के रूप में आपने काम किया, और कई छात्रों को अपनी संगीत विरासत को संरक्षित करने के लिए पढ़ाया। आपको बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिले संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए, कई सारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए। पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में, महासंगीत सम्मान पुरस्कार 2012 में, संगीत सम्मान पुरस्कार और

अर्ज़ीमा पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान आपको दिया गया। आपके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी, गिरजा और लाइफ टाइम इन म्यूज़िक, और इस डॉक्यूमेंट्री को इनके छात्रों ने ही बनाया था। 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से आपका निधन हो गया। आप तो स्वयं इस दुनिया से चली गईं, लेकिन पीछे छोड़ गईं संगीत की दुनिया की अमूल्य विरासत, जो भारत की हर एक पीढ़ी के लिए उनका आशीर्वाद है। और आज भी लोग गिरजा देवी जी को ठुमरी गायिका के रूप में बहुत ही सम्मान देते हैं और उन्हें याद करते हैं उनके बेमिसाल गायकी के लिए। सखियों, ये थी गिरजा देवी जी, जो ठुमरी की रानी कही जाती थी। और अब सखियों, कार्यक्रम में समय समाप्त होने को है, तो कार्यक्रम में अब आपसे और सारी बातें नहीं हो पाएंगी। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। सखियों, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। आज के कलाकार हैं विंध्यवासिनी सिन्हा और सहेलियाँ।

0: विंध्यवासिनी सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।
1: प्रणाम, ई आकाशवाणी हावे। अब रोवा लोग भोजपुरी में समाचार सुनी। लोकसभा में विपक्ष के हल्ला हंगामा के बीच आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश कर गई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ई विधेयक सदन में रख ले। ई विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के प्रावधान करेला। विधेयक पेश होखला के समय विपक्षी सांसद लोग नीट मुद्दा पर लैकन के विरोध प्रदर्शन के दौरान भइल पुलिस कार्रवाई पर चर्चा के मांग के लेके हंगामा कैले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहले कि परीक्षा सुधार के दिशा में ई विधेयक बहुत जरूरी कदम बा और ए पर नीमन से चर्चा होखे के चाही। हंगामा जारी रहला के कारण सदन के कार्यवाही स्थगित कर दिहल गइल रहे। राज्यसभा में भी लैकन के विरोध प्रदर्शन पर भइल पुलिस कार्रवाई के मुद्दा के लेके विपक्षी सांसद लोग भारी हंगामा कैले रहले। सुप्रीम कोर्ट परीक्षा पेपर लीक मामला के लेके लैकन के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के ज्यादा प्रयोग के आरोप से जुड़ल कई गो याचिका पर काल सुनवाई कल जाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और वी मोहना के पीठ विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल भइल पुलिसकर्मी के परिवार वालन की याचिका पर भी सुनवाई करे के फैसला भइल बा। ए बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कहले कि शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से विरोध प्रदर्शन कैल संवैधानिक अधिकार हवे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहले कि उ लोग अदालत की कार्रवाई में पूरा सहयोग करिहन। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा कहले बाड़न कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनला से परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी के गुंजाइश कम हो जाए। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करत बेरा श्री झा कहले कि टास्क फोर्स बिना कौनो पेपर लीक के और साफ सुथरा परीक्षा प्रणाली तय करे में असरदार भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले कि राज्य में डेयरी क्षेत्र के विकास कैल जाए। नालंदा में बिहार शरीफ में विकास योजना के शुभारंभ करत बिरा श्री चौधरी कहले कि राज्य में पैदा होखे वाला डेयरी उत्पाद के देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचावे खातिर विस्तृत योजना बनावल जा रहल बा। मुख्यमंत्री इहो कहले कि राज्य के हर एक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित कैल जाए। ऐसे किसानन के बीमार पशु के लेके परेशानी कम हुई। ए अवसर पर मुख्यमंत्री 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला दही और लस्सी प्लांट के शिलान्यास कैले। साथ ही कॉन्फेंट द्वारा चलावल जाए वाला APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया के भी शुभारंभ कैले। बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लेके सब दल प्रचार में अपन पूरा ताकत झोंक देले बाड़े। काल सांझे प्रचार के शोर थम जाई। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में रोड शो में शामिल भइलन। रोड शो में भाजपा सहित एनडीए के कई गो वरिष्ठ नेता शामिल रहले। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में आज रोड शो कर रहल बाड़न। जन सुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मोहल्ला में लगातार जनसंपर्क और सभा कर रहल बाड़े। वही जे कई गो निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरा जोश के साथ प्रचार में लागल बा। लोग राज्य के अलग अलग हिस्सा में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय भइल बा। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत

0: राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हिस्सा में कई गो जगह पर भारी बरखा की चेतावनी जारी भइल बा। वही जे बीतल 24 घंटा के दौरान बसुआ में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कइल गई। मौसम विभाग के तरफ से अगले 2 से 3 घंटा के दौरान अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, खगड़िया, मुंगेर, पटना, सहरसा और समस्तीपुर समेत राज्य के 14 जिला में तेज हवा के साथ बरखा के अलर्ट जारी कइल गइल बा। ए दौरान कुछ जगह पर बिजली गिरे के भी आशंका जतावल गइल बा। पश्चिम चंपारण के बगहा में बने वाला 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल के शिलान्यास कइल गइल। स्थानीय विधायक राम सिंह एकर नींव रखले। एकरा साथ ही पतिलार में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भी उद्घाटन कइले। अरवल जिला के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर के आयोजन कइल गइल। शिविर में लोग के अलग अलग कानूनी नियम के जानकारी भी दिहल गई। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल। प्रणाम।
1: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 6:10 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार। श्रोता भाई, आज अपन गांव घर कार्यक्रम में सबसे पहले को चर्चा कई जाई, चर्चा के विषय रही प्रकृति के संरक्षण काहे जरूरी बा। इकरी बात एगो लोकगीत मन मन साइन खातिर सुनल जाई, फिर एगो वार्ता रही। प्रकृति विश्व यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वार्ताकार रही हैं अभिनव कुमार। फिर एगो जानकारी कल जाई आयुष्मान भारत योजना के बारे में। इकरे बाद मौसम के कुछ अनुमान जानला के बाद कार्यक्रम के समापन कल। तो श्रोता भाई, देखी आज यानी कि काल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, इससे पूर्व संध्या पर हमनी के आज प्रकृति के संरक्षण कैल काहे जरूरी बा, एकरे बारे में जानकारी कैल जाओ। क्योंकि प्रकृति के गुद में हमनी के यानी कि सब जीव जंतु मानव आश्रय अपन बनैले बा। प्रकृति सब कुछ आज दे रहल बा। प्रकृति पर लगातार हो रहल बदलाव के पहचान, ओकर निगरानी आ मापी के सुविधा से हमनी के जानकारी मिल सकत बा। इस तरह से पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग सजीव तंत्र के रक्षा हो सकत बा। हमनी के आसपास दिख रहल बानी जा कि धरती पर जीव के सहारा देवे वाला अहम तत्व की गंभीर स्थिति में बढ़ुए। मई 2019 में ग्लोबल असेसमेंट दुनिया भर में करीब 10 लाख जीव जंतु और पौधा के प्रजाति विलुप्त होखे के कारगर पर बतौले। साथ में रिपोर्ट में पृथ्वी पर जीवन बचावे के मदद करे वाला संसाधन के बीच परस्पर जुड़ाव के बारे में भी बतौले। अगर हमनी के पृथ्वी के कोनो हिस्सा के प्रभावित करत माने जाता या ओकर मिलत जुलत असर दूसरा हिस्सा पर हमनी के देखे के मिल रहा बा। जैसे

मान लिया जाए पेड़ पौधा के कटाई या फिर मिट्टी दोहन कार्य, तो निश्चित बाकी हमने के संसाधन के साथ खिलवाड़ करत बने जा। अगर मानो यही तरह से पृथ्वी पर जीवन के सहारा देवे वाला संसाधन के साथ खिलवाड़ करत रही, तो एक दिन मानव प्रजाति भी विलुप्त होके के खतरा मंडराए लगे। निश्चित बा श्रोता भाई कि जौन प्रकृति के हमनी के दिन बा आ ओकरा साथ हमनी के छेड़छाड़ अगर कइल जाई तो निश्चित बा कु असर हमनी पर पड़ी। जैसे देखल जाओ आज कुछ पड़ रहल बा, बहुत से पेड़ पौधा के कटाई, बहुत से मिट्टी की कटाई, ये हमनी के खतरा के लक्षण। आज बारिश के इंतजार करे के पड़ता, कारण होखे वाला बारिश जो बा पेड़ पौधा के जो बा ओकरा के रोकेला, तूफान के बारिश के हवा के रोक के वर्षा करावेला, आज ओकरा के हमनी के काट के विनाश कर रहल बने। प्रकृति के देखी संरक्षण खातिर हमनी के कोशिश ये आधार पर करे के चाहिए, प्रकृति फले फूले खातिर काफ़ी जगह के जरूरत बा, चाहे वो औपचारिक रूप से संरक्षित बा, चाहे बेहतर तरीका से प्रबंधित निजी क्षेत्र संरक्षित इलाका के निगरानी कैले बा, तो ये पक्का कैल जा सकता। सही तौर पर संरक्षित क्षेत्र में काम करे के बा, परिस्थिति आ प्रशिक्षिकी के तंत्र मजबूती से एक दूसरा से जुड़े रखे के बा, ताकि एकर फायदामंद रहे। प्रकृति संरक्षण के प्रयास करे के चाहिए, मानव के हर तरह से अपन व्यवस्था में जो बा प्रकृति के संरक्षण करे के चाहिए। निश्चित बा मानव विज्ञान के तौर पर जीन गुडल कहले, जब हम ये बात समझब तब एकर ध्यान रखब, जब हम ध्यान रखब तब एकरा खातिर कुछ करब। अगर यह ध्यान के देवे में काम करे के बेहतर समझे के बा, तो एकर मौका हमने के निकाले के पड़े। एकरा बाद वाइडल इस्माइल कहलन कि वन जीव संरक्षण खातिर कल जाला एक प्रयास करे के चाहिए, जेकरा में बहुत बड़ा संगठन जुड़ल बा। एह तरह से हमने के निश्चित बा एकर सहायता कल जरूरी बा। कैमरा ड्रॉप विश्लेषण में तीज करके लोग बतेलस किस वन जीव संरक्षण के निगरानी के तरीका से और बेहतर बना जा सकता। रिसर्च में जेकर पास कैमरा ट्रैप डाटा बा, इस तरह से भी एकर निगरानी जहां जैव विविधता के डाटा पहचान करके साथ एक प्रबंधन हो सकत बा। एकरा अलावे हमनी के देखल रहिया कि इमेज में जानवर के प्रजाति के पहचान कैल जा सकता और ओकरा के भी बचावल हमनी के जरूरी बा, तब तभी जाके प्रकृति के संरक्षण यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु बा ओकर सहारा मिल सकता। एकरे अलावे देखल जाओ तो निश्चित बा के बेहतर विज्ञान से भी जुड़ल कुछ विशेषता बा। जैसे देखल जाओ विज्ञान पर आधारित समयबद्ध योजना है, जिकर लक्षण धरती पर मौजूद वन्य जीव के संख्या के बढ़ावा और जीव विविधता के बचावल रखल, ये निश्चित मुताबिक पेरिस जलवायु समझौता में सफल होके खातिर हमने के पृथ्वी के सुरक्षा और ओकर पहल जैसन करे खातिर एगो योजना बनावे के जरूरत बा। यही से ग्लोबल डील फॉर नेचर के शुरुआत भइल और ओकरा में इस्तेमाल करे वाला पता लगावे के कोशिश कैलस। इस तरह से धरती पर 50% हिस्सा प्रकृति खातिर बचा सकत मानी जा। एकरा बाद हमने के अगर इस तरह से व्यवस्था बनावे के चाहिए कि प्रकृति के जितना हिस्सा बा ओकरा के सुरक्षित रखल जाओ, ताकि आवे वाला समय में हमने के कोनो तरह के परेशानी मत होके। जितना जंगल बा ओकर कटाई हमने के बंद करे के पड़ी, जितना भी वन में यानी कि जंगल में जीव जंतु बड़ा सन ओकर

0: सुरक्षा करे के पड़ी और माटी जैसे डेटा सेट व्यायाम के संरक्षित क्षेत्र में भी हमनिको में काम करे के पड़ी, मानचित्र पर एकरा के लावे के पड़ी, तभी जाके एकर खाका तैयार करके वन जीव के प्रकृति निवास के क्षेत्र के दायरा में देखे के पड़ी और उकर विश्लेषण करके मदद करे के पड़ी। साथ ही हमने की ये भी चाही कि अलग अलग प्रजाति के सुरक्षा के आकलन भी हमने के करे के पड़ी, तब जाके जो बा कि मदद हमने के कर सकत बने जा, प्रकृति के संरक्षण हो सकत बा। और एकरा अलावे हमने के देखल जाओ कि निश्चित बा के प्रतीकी के जो संरक्षण हमने के प्रकृति के करे के बा, उकरा में खास कर वन जीव और जानवर के प्रजाति के भी संरक्षित क्षेत्र में भी बदलाव देखे के पड़ी और उकर उत्थान भी हमने के करे के पड़ी। एकरा अलावे हमने के देख रहल बने जा कि जो भी बा बेहतर बा इस्तेमाल करके संरक्षण विज्ञान के बेहतर करे के उदाहरण है। और एकरा से हमने के संरक्षण खातिर स्ट्रीट ट्यूब भी जानकारी जैसे सेव थी एथलीन के सफारी जल जाओ तो कहना जंगल में हाथी और उकर प्रकृति के घर में भी मिलल उकरा के भी सुरक्षा को देखी जरूरी बा। एकरा में हमने के वन में जो भी बा जीव जंतु सबके सहारा एक दूसरा पर निर्भर बा और एकर संरक्षित यानी कि संरक्षण कैल हमने के जरूरी बा, तबे जाके प्रकृति के संरक्षण हो सकता। और प्रकृति के संरक्षण यही से जरूरी बा कि हमने के आपन कोशिश करे के बा और आपन समय और जिंदगी बचावे खातिर प्रकृति के संरक्षण कैल जरूरी बा। तब आवल जाओ एगो मन मन साइन खातिर केसरी नंदन भगत और उनका साथी लोग से एगो लोकगीत सुनल जाओ, बदलत जमीन बदलत खेतिया ई बोल हो आवल जाए जानकारी कल जाओ।
1: हाँ।

0: देखी श्रोता भाई, कितना नीमन यहाँ के गीत रहल केसरी नंदन भगत जी के, बदलत जमीन बदलत खेतिया, ए पर यहाँ के मोटरी भर धनबाद दे दिया जाओ और चल जाओ अपना हमनी के विषय पर। चूँकि पहले भी हमनी कल जा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और हमनी के पर बात कही भी कल नहीं जा, लेकिन कुछ ऐसा भी परिस्थिति बढ़ुए और ऐसा भी जानकारी जो विशेष लग तरह से अगर हमनी के मिल जा रहा बा और जेकरा से हमनी के जानकारी लेवे के बा अभिनव दुबे जी से, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर यहाँ से भी जानकारी हमनी के तनिका ले लिया जाओ यहाँ के का कह रहा बन।
1: नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं यानी 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत सन 2018 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई को प्रकृति संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चयनित किया था। प्रकृति हम मनुष्यों को दिया हुआ वो कीमती उपहार है जिसके अनेक फायदे हैं। जिस सुंदरता को हम प्रकृति में देख पाते हैं वैसी सुंदरता का वर्णन करना शायद ही संभव हो। प्रकृति में जल, वायु, पेड़, पौधे शामिल होते हैं जो कुदरत का अपने आप में करिश्मा है। हम मनुष्यों को अपना जीवन जीने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे चारों ओर जो भी मौजूद है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, वे सभी चीज़ें प्रकृति में आती हैं। पानी, हवा, पहाड़, पेड़, फूल, आसमान, ये सभी हमारे प्रकृति का हिस्सा हैं। प्रकृति को हम नेचर भी कहते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द नेचुरा से बना है जिसका अर्थ आवश्यक गुण होता है। प्रकृति के कई रंग हैं जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। यह हमें रहने की जगह, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और हवा देते हैं जिसमें हम खुलकर सांस लेते हैं। प्रकृति के समर्थन के बिना इस धरती पर जीव जंतु एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ है जिसकी वजह से हम सभी लोगों का जीवन संतुलित चलता है। प्रकृति से हमें वो सभी संसाधन हासिल होते हैं जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ हमारी जिंदगी को बढ़ाती है बल्कि हमारे इकोसिस्टम का भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। प्रकृति के मदद के बिना हम इंसान खुद को असहाय महसूस करते हैं और हमारे लिए जिंदा रहना असंभव हो जाता है। हम अपने जीवन में रोजाना जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीने का पानी, हवा में सांस लेना, ये सब हमें प्रकृति द्वारा हासिल होता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं और इसके बिना हमारा जीवन

चलना नामुमकिन है, पर आज विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की प्रतिस्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना चाहता है। फलस्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण आज हम मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहां प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण न केवल मानव जाति को बल्कि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों को ऐसे वातावरण में धकेल दिया गया है जहां हम स्वस्थ जीवन की मात्र कल्पना कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं जो भविष्य में हमारे लिए घातक हैं, जैसे आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवांशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण ऐसे घातक दुष्प्रभाव हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का नष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से ग्रसित होना देखा जा रहा है। बड़े कारखानों से विषैले अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक कचरे से प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ रही है। हमें अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नदियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा पानी नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को दूषित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल एवं सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं, जिनके सेवन से रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला कर देता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। अच्छे एवं महंगे ब्रांड के कपड़े पहनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य एवं उनकी पूंजी है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों ही हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। प्लास्टिक सस्ता और इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक है, लेकिन इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण में एक अप्रिय चीज़ है। इसके बजाय विघटनीय और प्राकृतिक अवयवों से बने उत्पादों का उपयोग करें। तकनीकी तेजी से बदलती गति के साथ लोग नए इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना यह सोचे खरीद लेते हैं कि पुराने उत्पाद कहाँ जाएंगे। ज़्यादातर ई कचरे का निपटान गलत तरीके से किया जाता है। नए उत्पाद खरीदने से पहले अपने ई कचरे को कम करने का लक्ष्य रखें और रिसाइकलिंग पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभावों में से एक सुरक्षित पेयजल का घटता स्तर है। उपयोग में ना होने पर नल बंद करने जैसे उपयोग से हजारों लीटर पानी हम बचा सकते हैं। आज हमारे कुछ किसान भाई अपने खेतों में पराली जलाते हैं, जिसके वजह से वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। इसका रोकथाम जरूरी है। साथ ही साथ आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी हमारे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही है। जंगल दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, जिसका असर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। पेड़ों को काटे नहीं, हो सके तो जितना ज़्यादा पेड़ लगाएं। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी 28 जुलाई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह दिवस एक स्थिर और स्वस्थ समाज को बनाए रखने के लिए स्वस्थ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे पौधों और जानवर को बचाना विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक। इसके अलावा यह उत्सव प्रकृति के विभिन्न घटकों जैसे वनस्पतियों, जीवों, ऊर्जा संसाधनों, मिट्टी, जल और वायु को संरक्षित रखने पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने बाद आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ

0: प्रकृति का संकल्प लें।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
3: की श्रोता भाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर अभिनव दुबे जी कितना बढ़िया फरिया के बतैल हैं, ये पर हमने के अमल करे के चाही। और देखी एगो जानकारी जैसे कि हम कहल हैं कि आयुष्मान भारत योजना, तो श्रोता भाई आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जवन 10 करोड़ गरीब आ कमजोर परिवार खातिर लगभग यानी कि 50 करोड़ लाभार्थी के ई कवरेज कर रहा है। हर परिवार खातिर हर साल 5 लाख रुपया के मूल खातिर माध्यमिक आ तृतीयक स्थल पर बा। योजना भारत सरकार के हो, इमे स्वास्थ्य योजना हो जिकरा में जिकरा के 23 सितंबर 2018 के पूरा देश में लागू भई रहे। 2018 के बजट में योजना में घोषणा भी भई रहे। योजना के उद्देश्य बा आर्थिक रूप से कमजोर लोग के यानी बीपीएल धारक के स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना बा। एकरे अंतर्गत आवे वाला हर परिवार के 5 लाख रुपया तक के कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार के यह योजना के प्रत्यक्ष लाभ है। लेवे खातिर एकरा अलावे बाकी बचल आबादी के यह योजना के अंतर्गत योजना में हमने के देवे के बाद एकर उद्देश्य बाकी व्यक्ति या परिवार के सस्ता दर पर गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा प्रदान करे के बाद, ताकि लोग बिना परेशानी के बेहतर अपन स्वास्थ्य सेवा प्रदान प्राप्त कर सकता। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचावे खातिर कार्ड के उपयोग करे के बाद, कार्ड में आपके पूरा मेडिकल इतिहास और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बा, जेकर बीमा कंपनी अस्पताल एगो स्थान तक पहुँचा सकत बा। योजना प्रधानमंत्री 14 अप्रैल 2018 के भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन झारखंड के रांची से शुरू कैले रह। तो देखिए इस योजना के हमने के लाभ लेबे के चाही और ये योजना में जुड़े के चाही। अब आवल जा हमने के मौसम में, तो भारत मौसम विभाग के पूर्वा अनुसार यह अवधि में 29 जुलाई के दौरान आसमान घना बादल छावल रहे। जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और भारी वर्षा के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहे के संभावना बा। सापेक्षित आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहरिया में 55 से 60% रहे के पूर्वानुमान। यह अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के भी अनुमान बा। और काल जवन बा यानी कि 28 तारीख के वर्षा 8 में बा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 75% और न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 40%, हवा के गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार।

कार्ब रही। पवन दिशा 140 डिग्री और क्लाउड जो बा कौनो चेतावनी लेके, लेकिन मौसम के भी चेतावनी दौर बढ़ुए कि अगला दिन निश्चित बा कि जिला में एक दो स्थान पर वर्षा, मेघ गर्जन, तेज हवा, झाकेदार हवा चले के संभावना बा। इससे हमनी के सलाह दिहल जाता कि एकरा से बिजली चमक से दूर रहे के जरूरत बढ़ुए, और इसमें भी भारी वर्षा, आंधी, बिजली, तेज हवा फसल के भी नुकसान पहुँचा सकत बा। किसान भाई खातिर निश्चित बा कि कीट के प्रकोप पर सब्जी और बागवानी के जो फसल बा क्षति हो सकता, ओकरा पर भी हमनी के मौसम के अनुकूल देखते हुए दवा के प्रयोग करे के चाहिए। तो देखिए यही के साथ साथ हमनी के समय और आ गेल। चलत चलत सब श्रोता भाई बहन के, जगत भाई के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोज तिवारी और प्रिया भट्टाचार्य की आवाज़ों में। विनय बिहारी के बोल हैं और लाल सिन्हा का संगीत है। फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बिहारी बाबू फिल्म का भी आपने गीत सुना, आशा भोसले की आवाज़ में ब्रज किशोर दुबे के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ों में गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का, और फिल्म का नाम है नदिया के पार।

0: जसपाल सिंह और हेमलता के गाए इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 7 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ आसानी से, प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। इस कार्यक्रम में लगातार हम आप सबों को कोर्सेज के बारे में बताते हैं, ज्यादातर बुलाते हैं अपने विशेषज्ञों को, जानकारियां दिलवाते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में अवनीश रंजन थे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में जानकारियां दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया दोनों में अंतर करके कि प्लेन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या अंतर है, कहां कौन आगे और कहां कौन थोड़ा पीछे है। ढेर सारी जानकारियां हम आपको दिलवाते हैं। जैसे इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनके लिए 3 नए कोर्सेज आए थे जिसकी भी चर्चा हमने आपसे की थी। पहला था बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा था फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और तीसरा था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में आप पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद रोजगार मिलना, सबसे पहले ये देखना

0: चाहिए कि पढ़ने के बाद रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, यूनिवर्सिटी ने या जहां से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसने क्या व्यवस्था की है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी इसकी क्या व्यवस्था है, हमने जांच पड़ताल की आपके लिए और हमने पाया कि बजाबता एक पूरा यूनिट है आपके प्लेसमेंट को लेकर जो आपको तैयारी करवाता है कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जाए, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे जॉब असिस्टेंस दिया जाए, ये सारी चीजें और उस विभाग को जो देखते हैं ना, जो इंचार्ज हैं आज हमारे साथ हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय।
1: हम अरिंदम मुखर्जी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड इंचार्ज फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी।
0: अरिंदम जी बुनियाद कार्यक्रम में आ गए हैं और करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से जुड़ गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हाँ क्या क्या कुछ होता है बुनियाद कार्यक्रम में, हम जानकारियां देते हैं। आप हमें ये बताइए कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग हाँ जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी छात्र के लिए और प्लेसमेंट के लिए।
1: देखिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि स्टूडेंट लोग हायर एजुकेशन में आता है फॉर गेटिंग फॉर एक करियर बनाने के लिए, और ये करियर बनाने के लिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को डेवलप करने के लिए हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है ये इंडस्ट्री रेडी है और इंडस्ट्री रेलिवेंट है, और हम लोग स्पेशली स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है टू गेट अ जॉब। हाँ ये जो कंपनी यहाँ पे आता है ये कंपनी जैसा डोमेन नॉलेज में स्टूडेंट लोग का इवेलुएट करता है और ये देखता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता है क्या नहीं, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टूडेंट को डालता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग पहले साल से ही स्टूडेंट लोग को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब उसका प्लेसमेंट सीजन आएगा वो कंपनी में बैठ के सक्सेसफुल होके हाथ में जॉब लेके उसका कोर्स खत्म करेगा। और हम लोग दूसरा चीज जो है हम लोग प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है 6 महीना और 8 महीना पहले, कोर्स का खत्म होने का 6 और 8 महीना का पहले।
0: इसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या होता है, कौन लोग होते हैं, ये सारा कुछ बताइए जरा हमारे बिहार और झारखंड के सुनने वालों को।
1: हम लोग का यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनर है जो जिसका रेगुलर बेसिस में क्लास मिलता है वो क्लास में जाता है और स्टूडेंट लोग को रेडी करता है प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए। दूसरा चीज जो है ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हायर करता है आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और रेगुलर बेसिस में और एवरी मंथ वो कैंपस में आता है और हर डिपार्टमेंट को लेके वो बैठता है ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें उसका पर्सनल इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग होता है, एक्सटेम्पो ट्रेनिंग होता है, रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है, रीजनिंग का ट्रेनिंग होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज का ट्रेनिंग होता है। हाँ ये सब ट्रेनिंग हम लोग पहले से स्टार्ट कर देता है और ये आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के साथ एडिशनल ट्रेनिंग हम लोग देता है कि जब स्टूडेंट लोग प्लेसमेंट सीजन आएगा स्टूडेंट लोग रेडी रहेगा और ये आपका उसका हाथ में एक नौकरी लग जाएगा।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ हैं अरिंदम मुखर्जी जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग के हेड हैं। इन्हीं की देखरेख में बच्चों को ट्रेन किया जाता है जब कंपनीज आती है पढ़ाई के बाद, और जब नौकरी की बारी आती है तो एकदम पुख्ता ट्रेनिंग देके बच्चों को इंटरव्यू

0: देने लायक बनाया जाता है, नौकरी पाने लायक बनाया जाता है, और नौकरी बहुत बड़ी बात है, पढ़ने के बाद तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। बहरहाल ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से, जो कि सासाराम रोहतास जमुआर में है, और एक टोल फ्री नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए 1800 121 0051 1800 121 0051, और एक मोबाइल नंबर है जो सिर्फ आप युवाओं के लिए ही लिया गया है कि आप इस पर जानकारियां ले सकें, और वो नंबर है 9431899002 9431899002 ये नंबर है, इस पर आप अधिक से अधिक जानकारियां ले सकते हैं। और राजेश फिर कहता है आप लोगों से, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, और अब तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे की भी कोई समस्या नहीं रही। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और 13-14 ऑप्शन है टेक्निकल पढ़ाई का, यहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल मुखर्जी साहब एक बात बताइए, कहते हैं कि जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी, हाँ जो हिंदी में बोलता है, हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता है, उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज कम है, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है अभी बताइए।
1: देखिए हमारा का हिंदी है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, हाँ आपका पूरा भारत में इसका एक्सेप्टेबिलिटी है, और इसका भी बहुत सारा डिमांड है। आप कोई भी आपका जो डेवलप्ड सिटी है, टाउन में है, सब जगह में जहाँ जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है, ऑफिस है वर्क लोकेशन में, वहाँ पे हिंदी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और एक्सेप्टेबल है। और क्या है कि आप हिंदी इंग्लिश मिलके भी आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर पाता है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा, और हिंदी जो भी है आपको अच्छा तरीके से एक्सप्रेस करने पड़ेगा, हिंदी में हो और अंग्रेजी में हो, वो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने पड़ेगा, वो चीज़ सही होने से आपको जॉब मिल जाएगा।
0: हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने सचमुच बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात बताइए, क्या 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए आप गारंटी देते हैं, असिस्टेंस देते हैं? क्योंकि चीजें साफ साफ होनी चाहिए, एकदम खुल के, कोई छिपा के, लाग लपेट के साथ नहीं। बताइए क्या है मुखर्जी जी आपके यहाँ GNSU में?
1: आपको देखिए इंडिया में और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी नहीं देता है। ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, हम लोग का काम है स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट को रेडी करना, उसको नॉलेज देना, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है, और हम लोग का बिलीफ है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा।
0: वाह बहुत खूब, आपने जो बातें थी आपने सच सच बता दी कि 100% हम असिस्टेंस देते हैं, गारंटी की बात नहीं है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, कोई सजेशन देना चाहिएगा स्टूडेंट्स को, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं।
1: हमारा तो एक ही सजेशन है,
2: कार्यक्रम के प्रायोजक,
1: ये आपका प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, हम लोग का काम है स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट को रेडी करना, उसको नॉलेज देना, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज है हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है, और हम लोग का बिलीफ है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस होगा।
0: वाह बहुत खूब, आपने जो बातें थी आपने सच सच बता दी कि 100% हम असिस्टेंस देते हैं, गारंटी की बात नहीं है। चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, कोई सजेशन देना चाहिएगा स्टूडेंट्स को, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं।
1: हमारा तो एक ही सजेशन है, एडवाइस है, जो भी बोलिए, स्टूडेंट लोग को बोलिए कि आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और नॉलेज और स्किल उसको एक्वायर करना बोलिए, नहीं तो उसको तुरंत जॉब नहीं मिलेगा, उसको स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसका उसके लिए वो आपका क्या है कि ऑब्सोलेट हो जाएगा इंडस्ट्री में, और इसीलिए एक टेक्निकल नॉलेज का बहुत ही जरूरी है।
0: बहुत सही कहा अरिंदम मुखर्जी साहब आपने स्टूडेंट से, कि टेक्निकल होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, और राजेश भी कहता है।

0: है कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए टेक्निकल में आ जाइए और नौकरी मिल जाएगी, इसकी आप आशा कर सकते हैं अगर जो आपने अच्छे से पढ़ाई की। मुखर्जी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरत होगा तो हम फिर आपको बुलाएंगे बुनियाद कार्यक्रम में। पूरा बिहार और झारखंड आज जो आपसे बात हुई ये सुनकर लाभ उठाएगा युवा साथी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, चलने का वक्त धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा है, पैसा नहीं है क्या हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वैसे कोर्स को चुनिए जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। टेक्निकल पढ़ाई करनी है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 13-14 टेक्निकल पढ़ाई, मेडिकल से शुरू करके पैरामेडिकल से एग्रीकल्चर बहुत सारे हैं, आप पता कर लीजिए इन नंबरों पर 9431899002 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800120051, इस नंबर पर पता कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने ये बुनियाद कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। चलते हैं अगले एपिसोड में, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम।

गुड इवनिंग रोहतास। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विकसित भारत समृद्ध बिहार पंचायत विकास दिवस के अवसर पर कल यानी कि रविवार को सूर्यपुरा और दावत प्रखंड के सभी पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरीपुरा के सूर्यपुरा, बलिहार, गोंसलडी, अगरेर और शिवबहार ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जिसे पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने देखा।

नोखा प्रखंड के पंचायत सरकार भवन कुरी में पंचायत विकास दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया दीनानाथ राय ने की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नोखा विधायक नागेंद्र चंद्रवंशी, वीडियो शेफाली, सीओ पुष्पा कुमारी और पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार, प्रखंड प्रमुख अरविंद कुमार और प्रखंड बीस सूत्रीय अध्यक्ष रूपेश चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। विधायक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गरीब और असहायों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रमुख रूप से शामिल है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुखिया दीनानाथ राय ने पंचायत की विकास की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और आगामी विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की।

माँ अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के तत्वाधान में स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराना तथा समाज में सेवा और मानवता का संदेश देना था। इसका नेतृत्व भोजपुरी फिल्म निर्माता लोकेश मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि माँ अन्नपूर्णा सेवा संस्थान समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा को अपना प्रमुख दायित्व मानता है।

और अब बात कोचस की। बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में रविवार को शिव चर्चा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करीब 2 घंटे तक के भोलेनाथ की आराधना के बाद लोगों ने पर्यावरण की रक्षा को लेकर सामूहिक रूप से शपथ ली।

फार्मर आईडी बनाने से किसानों को सभी सरकारी योजनाओं और अनुदान का सीधा लाभ मिलेगा। जिले में किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत 1,32,150 किसानों में से 1,06,421 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी है कैमूर जिले में। कैमूर जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अधिक विद्यार्थी राष्ट्रीय काव्य उत्सव में भाग लेंगे। विद्यार्थियों से इस राष्ट्रीय काव्य उत्सव में शामिल होकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक गीत।

0: गीता दत्त के गाए इसी गीत के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसके बाद जिले की हलचल, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मौसम में तो गीत नाटक सुनने में निमन लागबे करेला।
2: तो इस सारे गीतों के लिए उषा उपाध्याय को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो भाई समय समाप्त हो रहा कार्यक्रम का।
1: चले, तो नमस्कार सुधा भाई।
2: नमस्कार रचना जी।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे, मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
2: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
4: कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
11: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
12: बड़ी बहू,
13: ये तुम्हारी ना।
12: इतनी भी क्या जल्दी थी?
13: अरे, और छोटी, ये तुम्हारी ना। और ये
12: मेरी गुड़िया की
13: ना। पर दादी,
12: आपके नाम?
14: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
13: शुभ शुभ बोलो।
12: क्या?

0: ये कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी का आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस अधीक्षक ने कहा, बिना आदेश चलाई गई गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के दूध उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार अंतिम दौर में एनडीए, राजद और जनसुराज ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक का प्रावधान करता है।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन से परीक्षा प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। श्री झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।
4: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ये तो अभी का होगी, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप

0: फुलप्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुलप्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जवान के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
2: इस संबंध में अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच प्रारंभ की गई है, डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। साथ ही मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि जो जेपी चौक पर AK-47 की फायरिंग से किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं है हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है।
1: वहीं जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने स्पष्ट किया कि सिपाही को गोली चलाने का आदेश किसी ने नहीं दिया था।
3: उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा के बिहार शरीफ में विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के डेयरी उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
4: दुनिया के मार्केट में हम कैसे अपने दूध को, अपने आइसक्रीम को, अपने पेड़ा को कैसे दुनिया के मार्केट में ले जाने का काम कर सके, इसकी चिंता की जा रही है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यक्रम के तहत कम्फेड के परियोजना की लगभग स्वीकृति दी गई है और इसके माध्यम से जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें लगभग 2,500 के आसपास नई समिति बनाने का काम किया गया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इससे किसानों को बीमार पशुओं को लेकर समस्याएं कम होंगी।
4: हम लोगों ने तय किया है दो चीजों को बिहार के गांव-गांव तक फैलाना है। एक तो अभी सभी प्रखंडों में जिस तरह दवाई की दुकान उपलब्ध होती है उसी तरह पशुपालन से जुड़े हुए जो दवाई उपलब्ध कराना है उसके लिए भी दुकान लगभग 1,000 से अधिक केंद्र बनाने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा सर।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में आज रोड शो किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस रोड शो में शामिल हुए। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। राजद का रोड शो मीठापुर से शुरू होकर सब्जी बाग में समाप्त हुआ।
2: इस सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। एक बार जनता खड़ी हो जाएगी तो आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, तो सुनाकी का भी विकास होगा।
1: इधर जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आज विधानसभा के विभिन्न संयुक्त समितियों के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित

0: गई बैठक में समितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बैठक में कई आवश्यक सुझावों पर चर्चा के बाद आगामी कार्य योजना पर सहमति बनी है। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।
1: अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान कैमूर और रोहतास जिले के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न तटबंधों की स्थिति, नदी के कटाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों के साथ ही अंतर जिला समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को तटबंधों की निगरानी, सैंड बैग की व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उन्हें रंगदारी की रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया है। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। पटना में 28 जुलाई को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रेड रन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंगेर विश्वविद्यालय के 6 खिलाड़ियों की टीम आज रवाना हुई। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने इन्हें रवाना किया। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरों में पुलिस ने छापेमारी कर मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने बताया है कि जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर 12 करोड़ की लागत से 6 फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति मिल गई है, निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने छपरा शहर में संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान 43 बैग अवैध रूप से भंडारित उर्वरक जब्त किया गया। पश्चिम चंपारण के बगहा में बनने वाले 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। स्थानीय विधायक राम सिंह ने इसकी नींव रखी। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी के 1,819 मोबाइल फोन, प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी का आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिस अधीक्षक ने कहा बिना आदेश चलाई गई गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा राज्य के दूध उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में एनडीए, राजद और जनसुराज ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
1: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
3: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
4: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
5: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकेंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पूल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
3: तो लेन देन?
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
7: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर जिले में सेवा संकल्प समर्पण के 100 दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की उपलब्धियों, जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तथा राज्य के भविष्य के विकास रोड मैप को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधा प्रसारण से। मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत जिला पदाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भूमिहीन परिवारों के बीच वाचगीत पर्चा का वितरण भी किया गया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। बीते दिनों जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में समरणालय के मिनी सभागार में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आरम के हाई स्कूल के प्रांगण में जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के निर्माण के लिए अमरपुर और चांदन प्रखंड के क्षेत्रीय कर्मियों तथा दोनों प्रखंडों के चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। दो बैचों में प्रशिक्षण का कार्य निदेशालय से आए प्रशिक्षकों रविंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार सिन्हा, विवेक प्रकाश और खालिद अहमद अब्बास द्वारा कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 22 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक चलेगा। गरीब चौपाल यात्रा के अंतर्गत राज्य सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री तथा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन बीते दिनों बांका पहुंचे। चंद्रशेखर सिंह नगर भवन टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उन्होंने शुभारम्भ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुमन ने कहा कि पार्टी गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा गरीबों के अधिकार के लिए निरंतर कार्य करेगी। उन्होंने लोगों से शिक्षा के प्रति जागरूक होने की अपील की और अपनी समस्याएं लिखित रूप से देने का आग्रह किया ताकि जिला प्रशासन के सहयोग से उनके समाधान का प्रयास किया जा सके। जिले में 7 निश्चय के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार सहयोग शिविर और जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में समरणालय के मिनी सभागार में आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A भागलपुर डिवीजन से संबंधित भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने तथा रैयतों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से बीते दिनों बाराहाट अंचल में भूमि अधिग्रहण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रैयतों से मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन किया गया। अधिकारियों ने रैयतों को आवश्यक अभिलेखों एवं प्रक्रिया की जानकारी देते हुए शीघ्र दस्तावेज

0: उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। बांका जिले के जिलाधिकारी के अध्यक्षता में समरणालय के मिनी सभागार में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विकास की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक तथा विभिन्न प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिहार भवन और अन्य सन्नी मार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में निबंधित 81,388 निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 करने का लक्ष्य प्राप्त किए गए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विदु शेखर।
2: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। इसके बाद जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों से, फिल्म परदेश से। आनंद बख्शी के बोल हैं और नदीम शर्मन का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश जो ईमेल हम तक पहुंची है, आप हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गौहारकर, सुमित गौहारकर, कुमारी धोनी गौहारकर पड़ी और प्रिंस एकांश गौहारकर। और आप हमारे श्रोता हैं दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और आप हमारे श्रोता हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा कार्यक्रम ही मनपसंद का शेष भाग। हम लेकर पुनः हाजिर होंगे 8:15 पर। कहीं जाइएगा नहीं।

पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक

जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम

परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुख सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान

0: निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृहमंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मनपसंद का शेष भाग। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ से। समीर के बोल हैं, नदीम शरवण का संगीत है और फिल्म का नाम है सड़क। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू।

और आप हमारे श्रोता हैं गांव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार शेख जफर हसन स्वामी राज भारद्वाज राकेश कुमार और शिवा लोहट। और आप हमारे श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा जी नूतन मिश्रा गुंजन छोटू अमित सुमित अमन पराशर बेबी आराध्या और लल्लू पंडित।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सड़क फिल्म का ये गीत सुना। समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक पहुँची है, आप हैं पारसमरी रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक बाड़मेर से पम्बलेश पनवार, डैनी पनवार, मनीष पनवार, आप हैं दिनेश चौहान रामदेवरा से, आप हैं बाबूराम जयपाल डांगरी से और आप हैं खुदा बख्श खलीफा खलीफों की बावरी से। और आप हमारे श्रोता

मैं करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौरा, मंजीत कौर जौरा, करणवीर करण, दफिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। और आप हमारे श्रोता हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ संवाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमस खन्नी, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खन्नी। आप हैं जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इशाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और आप हैं हाजी अयूब शेरी।

और आप हमारे श्रोता हैं ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से। आप हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगजीत सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह, डमरू कलाकार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत। और अब लीजिए सुनिए रूप कुमार राठौर की आवाज़ में इंडियन फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है आकाशी सासाराम से। आप हमारे श्रोता हैं सकीबा, अलिया, कमाल, मेराज और निसार। और आप हमारे श्रोता हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बागबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से। आप हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन।

और आप हमारे श्रोता हैं दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, और आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आरती, आकर्षण और जयश्री।

और आप हमारे श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत।

रूप कुमार राठौर की आवाज़ में अभी आपने इंडियन फिल्म का ये गीत सुना, और अब लीजिए सुनिए नाम फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश ईमेल हम तक पहुंची है। आप हैं पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया गुड्डू।

और आप हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र अभिजीत गौहारकर राही, श्रीमती सरिता गौहारकर, परिणीता सिद्धांत गौहारकर और अर्जुन गौहारकर टुक टुक।

और आप हमारे श्रोता हैं जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। और आप हमारे श्रोता हैं बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।

0: इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ई मन पसंद अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। समाचार संध्या के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं या स्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी

0: यूकेपीएनपी ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। यूकेपीएनपी ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में

0: नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीति मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोरंजन ओझा की आवाज से।

मंदाकिनी सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही लोक धारा कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बंदगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जारीना बानो की आवाज़ से। एल्बम का नाम है नबी से अली तक।

0: जरीना बानो के गाए इसी गीत के साथ ही बंदगी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया

0: बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
3: हूं। किसने कहा है? एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो हाथ में।
2: अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
1: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान, आज के फनकार।

0: अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है? कहां है रे दूसरा? ए फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है?

0: मार दो। तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को। ठहरो। आओ आओ अब आयो हाथ में। आओ आओ शाबाश।
1: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो यह भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी।
2: अरे काले

0: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
1: कौन? कौन?
2: डर गए क्या? कसम भैरों की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
2: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ पे कोई काम नहीं
2: है। है काम है, देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: आपको लाने के लिए मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
3: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा
3: क्या हुआ?
1: देखो
3: काली बाबू, आप
2: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
4: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब।
2: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू

0: रुपए पूरे ले लीजिए और बिल पास करने के बाद
1: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
2: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
0: बस बस बहुत हो गया बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे वरना।
1: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
0: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरव की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
3: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं। जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
0: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
4: आप घर में है?
0: मैं
4: आदाब सर विशन साहब।
0: आइए आइए सेठ जी, आइए।
1: नमस्ते सेठ जी।
0: नमस्कार। दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ, मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
5: इतने बड़े स्टेडियम में और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
6: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
0: हाँ। ऐसे नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: क्या आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहां आपको ये बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया। हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना, हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहां ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: फिल्म।
1: याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रूदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुलाम अली की आवाज़ से। एल्बम का नाम है तेरे शहर में। मोइन नज़र के बोल हैं और प्रधुन शर्मा का संगीत है।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम तेरे शहर में का ये गीत मोइन नज़र के बोल थे। और अब लीजिए सुनिए शबनम माजिद की आवाज़ में एल्बम अच्छा सिला दिया, एसएम सादिक के बोल हैं और साबिर अली का संगीत है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शबनम माजिद की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं का ये गीत, और अब लीजिए सुनिए अनुराग मिश्रा की आवाज़ में लम्हा एल्बम का ये गीत। गीतकार हैं अनुराग मिश्रा और संगीतकार शिवम।

अनुराग मिश्रा के गाए इसी गीत के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ से। इंदिवर के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। फिल्म का नाम है कलाकार।

लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए परिचय फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है।

और अब लीजिए, सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जावेद अख्तर के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना 1942 ए लव स्टोरी का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में याराना फिल्म का ये गीत अनजान के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः कालीन सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से और 5:56 पर आप सुनेंगे आरंभिक उद्घोषणा। 6:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार, चिंतन, श्री रामचरितमानस, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते रोहतास और 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। आठ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे देशभक्ति संगीत और 8:20 पर आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। प्रादेशिक समाचार के लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रातः 8:45 पर।

प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

और 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी और 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम रसधार और 11 बजे पूर्वाह्न आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग।

0: 7:50 पर आप सुनेंगे, आपके माफ कीजिएगा, शाम की सभा की शुरुआत होगी 5:10 पर वंदन कार्यक्रम से, और 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, और 6:05 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों एवं बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझे गीत। गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम आप सुनेंगे हमेशा की ही तरह 7:15 पर, और 7:25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम ई मनपसंद आप सुनेंगे रात्रि 7:50 पर, और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम ई मनपसंद का शेष भाग आप सुन सकते हैं, और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, और 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों की कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर जानेंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का रूपरेखा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और सभा का समापन होगा हमेशा की तरह रात्रि 11:10 पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: सर फिरोजी, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच

0: दिए। लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion.